तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरों वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं, और वो भी राय जाहिर से ना गौर व तामुख से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं।

मैं खुदा पर जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो इसको चोटी से पकड़े हुए है, बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रस्ते पर है।

उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे होशों में ही रहने दो।

0: यूसुफ ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में खयानत नहीं की और खुदा खयानत करने वालों के मकरों को रू बराह नहीं करता।
1: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
2: سيد الأولين والآخرين
1: FM 92.6 आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: वेलकम बैक. हम बढ़ते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम की तरफ. आप जानते हैं कि आज हमारे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट मौजूद है. 7 डिपार्टमेंट्स हैं FOST के मातहत और 7वां डिपार्टमेंट फिजिक्स है. आज आखिरी प्रोग्राम है. डॉक्टर ताहिरा साहिबा, आपसे शुरू करूंगा. आप मुझे ये बताइएगा कि प्योर साइंसेज जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, ये क्यों अपनी कदर खो रहे हैं?
4: सर, ये मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि वन कैन नेवर डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक साइंसेस. उसके बगैर मुमकिन नहीं है. लेकिन अगर हम देखें, एज वी ऑल नो कि वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, अब बेसिक साइंसेस जो हैं वो हो चुकी हुई हैं, उनके बारे में रूल्स, प्रिंसिपल्स वो डेवलप हो चुके हुए हैं, लॉज डेवलप हो चुके हुए हैं. उनको अप्लाई करके अप्लाइड साइंसेस जो हैं वो अब ज़्यादा ग्रो कर रही हैं.
3: डॉक्टर अलवी साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँगा कि क्या वजह कि बेसिक साइंसेस जो कि एक शजर की मानिंद होती हैं, उससे हट के लोग फल खाने पे लगे हुए टेक्नोलॉजी की तरफ, आखिर क्या वजह है?
5: सर, वजह ये है कि देखें, बेसिक साइंस को किसी तौर पे हम इग्नोर नहीं कर सकते. बेसिक्स, जैसे कहते हैं कि रूट्स हैं तो ट्री ग्रो करता है. सो रूट्स आर द फंडामेंटल्स. डेट्स वाई कि बेसिक साइंसेज आर द फंडामेंटल्स. इनके बेस पर ही अब ये न्यू एडवांस टेक्नोलॉजीज अब ग्रो कर रही हैं. तो हमें ज़रूरी है कि हम पहले इनको, हाँ, इसमें कुछ न्यू एडवांसमेंट लेकर आएँ. इन बेसिक साइंसेस में हम अपने रोड मैप को रीशेड्यूल करें, रिव्यू करें और उसमें कुछ चेंजिंग लाएँ, अप टू डेट करें, स्टेट ऑफ द आर्ट करें, तो इंशाल्लाह ये हमारा बेसिक साइंसेस पीछे नहीं रहेंगे फिर इसमें.
3: जी बिल्कुल ठीक, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया. डॉक्टर मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब, आपसे भी यही सवाल पूछूंगा, क्या वजह है कि बेसिक साइंसेस अपनी कदर क्यों खोती जा रही हैं?
6: जी सर, जिस तरीके से डॉक्टर ताहिरा और डॉक्टर अलवी ने बात की, बिल्कुल सही है कि बेसिक साइंसेस जो हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है स्टार्टअप है, यहीं से हम इस चीज़ को डेवलप करते हैं. जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे लोगों का फोकस आजकल ज़्यादा है. लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा अगर इसको बताना चाहूँ कि जैसे आज से कुछ साल पहले एक इंजीनियर वकार अजीम साहब आए थे टीवी पर, उन्होंने पानी से गाड़ी चलाने की एक
3: नाकाम
6: कोशिश की थी और उसमें बहुत ज़्यादा लोग कन्विंस भी हो गए थे कि मतलब ऐसा पॉसिबल है. लेकिन एज अ बेसिक साइंस एक्सपर्ट हमारे जो सीनियर्स थे, उन्होंने फौरी तौर पर बताया कि इट्स नॉट पॉसिबल बाय जस्ट यूजिंग अ सिंपल लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी. तो इसका मतलब है जब तक आपके पास बेसिक साइंस का नॉलेज नहीं होगा, आप जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी जो है वो एक्सेल नहीं कर सकते. सो वी नीड कि ये इनको हमें छोड़ना नहीं है. लेकिन जैसे आतिफ साहब ने कहा कि इन्हीं में हम ऐसी एडवांसमेंट लेके आए जो कि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो, ज़्यादा अप्लाइड नेचर की हो, और उसके ज़रिए जो है वो हम बेसिक साइंसेस को दोबारा अपने मुकाम पे लेके आ सकते हैं.
3: बिल्कुल ठीक. डॉक्टर अलवी साहब, आप बताइएगा कि जैसे हमने कोशिश की फिजिक्स को दोबारा से अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने के लिए और दिलवाने के लिए, तो हमने BS फिजिक्स प्रोग्राम को हमने रिस्ट्रक्चर किया. थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसरन, क्योंकि बाकी भी पैनलिस्ट से यही सवाल मैं करूँगा.
5: जी सर, बिल्कुल सर, हमने रीस्ट्रक्चर किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पहले तो इसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई. फॉर स्पेशलाइजेशन हमने कहा कि BS फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई थी, मेडिकल फिजिक्स में थी, AI फिजिक्स में थी, फिर नैनो टेक्नोलॉजी फिजिक्स में उसमें हमारे पास थी. देन जब रीस्ट्रक्चर फर्दर किया तो हमने एक और फिर बैचलर प्रोग्राम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया फिजिक्स डिपार्टमेंट ने, अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ यू सर डॉक्टर करार, BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग. और स्टेट ऑफ द आर्ट है, एज यू नो, जैसे कि नाम जो है हमारे टेक्नोलॉजी की जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग, बिकॉज कंप्यूटिंग एंड AI इन्वॉल्व इन ऑल फील्ड्स. डेट्स वाई विदाउट देयर वी कांट ग्रो. सो ये हमने कुछ इसमें कुछ न्यू इंट्रोड्यूस.
3: वेरी ट्रू. डॉक्टर ताहिरा साहब, मजीद इस पर रोशनी डालेंगे, BS कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग और मजीद इस पर क्या क्या है?
4: ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, प्रोग्राम है, जो एक परफेक्ट ब्लेंड है प्रिंसिपल्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का. इट फोकसेस ऑन द डिजाइन, फैब्रिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो स्केल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंटीग्रेटेड विद मॉडर्न कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी. तो अगर मैं बात करूं इसके कुछ की बेनिफिट्स की, तो इसमें इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री रेलेवेंट नॉलेज स्टूडेंट्स को मिलता है, लाइक ट्रेनिंग इन VLSI डिज़ाइन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज विच परफेक्टली अलाइंस विद द करंट टुडेज डिमांड. और फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देंगे, लाइक माइक्रो एंड नैनो फैब्रिकेशन ऑफ डिवाइसेस, सर्किट डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग में. रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स विल गेट एन एक्सपोजर टू कटिंग एज रिसर्च इन नैनो डिवाइसेस, स्पिनट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम्स.
3: बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब, आप भी इस पर कुछ अपना इजाफा कीजिएगा कि इस नए प्रोग्राम के तारुफ करवाने से क्या हम जदीद तकाजों को पूरा कर पाएंगे.
6: जी सर, इसमें हमने बेसिक जो कोर्सेज हैं उनको भी साथ रखा है, जैसे हम इसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस भी पढ़ा रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को भी लेके चलेंगे, फिर हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे इसको फोकस करेंगे. उसके बाद फिर हमने इसमें ऐसे प्रोग्राम्स एंटर किए हैं जो कि लादमत एडवांस लेवल के हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप मैथमेटिकल मैथड्स हैं जिनके थ्रू आप जो है ये जो आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको आप मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हुए उनके ऊपर फिजिक्स भी इम्प्लीमेंट करें, मैथमेटिक्स भी इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको कंप्यूटिंग के थ्रू भी जो है उसको करवा रहे. तो ये जैसे डॉक्टर थायरा ने कहा, ये ब्लेंड है बेसिकली तीन फील्ड्स का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स एंड कंप्यूटिंग. तो इस वजह से यहाँ इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, कि इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और वहाँ पर उनके लिए जो है वो इंडस्ट्री लेवल पे अपनी जॉब्स को
3: सिक्योर
6: करना बहुत आसान हो जाएगा.
3: जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बताया. सो लेट्स होप एंड प्रे कि ये नया इनिशिएटिव जो है वो अल्लाह ताला इसको बार आवर करे और समर आवर करे. इसी के साथ हम चलते हैं एक और वक्फे की तरफ, कहीं मजा आइएगा, सुनते रहिए यूसीपी की दुनिया.

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: जी डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर अलवी, मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों की जहनी तालीमी इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट में आप क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे बच्चों की जहनी नशोनुमा हो पाए?
2: जी डॉक्टर साहब, इस पर क्योंकि हमारे पास करिकुलम के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना भी ज़रूरी है, तो डेट्स वाई स्टूडेंट्स को स्टडी के साथ साथ इंगेज करने के लिए हम जैसे फेस्ट है हमारा जो पिछले 2 साल से चल रहा है और हो रहा है, इनकाद हो रहा है उसका, तो उसमें हमने बाकायदा इंटरटेनमेंट के लिए ह्यूमन लूडो टाइप ऐसी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं। इसके अलावा फिर उनमें कम्पटिशन डेवलप करने के लिए जो है पोस्टर कम्पटिशन्स का है, देन ब्रेन फेस्ट का है, गेम्स का है, इस तरह प्रोजेक्ट्स का है, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने उसके कंपटीशन है, देन इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए कि एक हमने फिजिक्स डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, डॉक्टर करार साहब ने उसको बाकायदा आगे प्रोसीड किया, जिसमें था कि जी नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक विजिट करवाया गया यहाँ पर उनके जो मेम्बर, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी का यहाँ पे एक सेमिनार करवाया गया, और उस सेमिनार में फिर बाकायदा बच्चों के लिए जो एक सीखने का बहुत सा लम्हा था, बहुत से अच्छा इंटरटेनमेंट मौजूद थी। इस किस्म की एक्टिविटीज़ का हम कोशिश करते हैं कि निकात करेंगे।
1: जी डॉक्टर तारा साहब, आप इसमें मज़ीद इजाफा करेंगी?
3: जी, चूँकि मेरा फील्ड नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, तो और ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें रिसर्च और हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंटल लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशंस की हैं, जैसे सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन फिज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर इसमें इनमोल में हम स्टूडेंट्स को नैनो मेडिसिन पे और मेडिकल फिज़िक्स पे रिसर्च करा रहे हैं, फिर हमने नेशनल सेंटर फॉर फिज़िक्स इस्लामाबाद जो है वहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के लिए विजिट्स अरेंज किए हैं, और आगे हमारे प्लान हैं कि हम रिसर्च कोलैबोरेशंस भी स्टूडेंट्स की को वहाँ पे भेजने और रिसर्च करने के मौके फराहम करेंगे। उसके अलावा फिर एनवायरमेंटल फिजिक्स में रिसर्च के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके साथ हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की और हमारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर जाके काम किया बिल्कुल अप टू डेट टॉपिक्स के ऊपर और अच्छी रिसर्च की जो कि पब्लिशेबल मटेरियल था। और इस तरह से हम ना सिर्फ इनके साथ अपने रिसर्च स्टूडेंट्स के साथ इन इंस्टीट्यूट्स और लैब्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बल्कि हम बाकी भी अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स वगैरह जो हैं वो भी अरेंज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे और इन इंस्टीट्यूट्स में भी, जिनका मैंने जिक्र किया है कि वो 6 मंथ्स की शॉर्ट जो इंटर्नशिप्स हैं वो करें, उनको सर्टिफिकेशन मिले जो आगे करियर में भी उनको हेल्प करे, इसी तरह से उनको फिजिक्स के लॉज जो वो थ्योरी में पढ़ रहे हैं वही उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का भी मौका मिले।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुजस्सर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फेस्ट के दौरान और वैसे भी पीछे भी हमने एक दो जो पंजाब कॉलेज से भी हमने एक बुलाए थे उसके बारे में बताइए, वो एक्टिविटीज़ क्या थी?
4: जी, हमने PGC से जो है वो एक हसन फरीद साहब हैं जिनका बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, वो एक बड़ी डायनेमिकल किस्म की वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो फिज़िक्स के बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजीली वे जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमने उनको बुलाया, एक बहुत अच्छी गैदरिंग थी हमारे स्टूडेंट्स की,
1: स्टूडेंट ने उसको बहुत एंजॉय किया, लोग आए थे
4: जी बाकी डिपार्टमेंट से भी लोग आए और उसको उन्होंने बहुत एंजॉय किया और बहुत अप्रिशिएट किया। वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स जो है उन्होंने साइंस में इंटरेस्ट लिया, फिज़िक्स के रूल्स एंड लॉज में इंटरेस्ट लिया और उसको बहुत अच्छे तरीके से परसीव भी किया कि ये चीज़ें कैसे, इवन ये कि बहुत सारे ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स के साथ कुछ बच्चे भी आए हुए थे जिन्होंने में पार्टिसिपेट किया और वो उन्होंने इसको एंजॉय किया। फिर उसके साथ साथ हमने जो है वो एस्ट्रोनॉमी नाइट का भी एक अरेंज किया हुआ था जिसमें हमने एक टेलीस्कोप जो है वो अपने एक हमारे एक कोलीग हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने जो है वो यहाँ पर अरेंज की, वो हमने UCP की बिल्डिंग के टॉप के ऊपर हमने इंस्टॉल करके वहाँ से जो है वो सितारों का सियारों का नज़ारा किया, वो भी हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गई। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट अरेंज करता रहता है जिसमें हम स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं ताकि खेल खेल में जो है वो स्टूडेंट जो है वो
1: अपनी मुझे बताइएगा जो आपका है खासा है माइंड गेम या ब्रेन गेम्स वो
4: जी जी ये मतलब मैंने यहाँ पर 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम पे यहाँ पर एक फेस्ट का जो चल रहा था उसमें हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी कुछ ब्रेन गेम्स जो ऐसी गेम्स जो कि मतलब बोर्ड गेम्स कहलाती हैं और अब पाकिस्तान में बहुत रेयरली जो है वो खेली जाती हैं तो उससे हमने स्टूडेंट्स को जरा स्टिमुलेट करने के लिए उनके माइंड को और
1: थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करने
4: जी जी बिल्कुल तो उसमें हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे पास जो पीजीसी के जो स्टूडेंट्स आए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के उन्होंने जो पहले साल था उसमें उनका इंटरेस्ट था फिर उसके बाद जब दूसरे साल वो आए दे ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस गेम्स तो फिर उनका इंटरेस्ट उससे डबल हो चुका था कि जो पहली दफ़ा अगर फर्ज करें कि हमारे पास किसी एक गेम के लिए 10 से 12 रजिस्ट्रेशन आई थी तो अगली दफ़ा वो 50-60 हो चुकी थी तो हमें फिर उसमें जो है वो फिर हमें एक लगाना पड़ा कट लगाना पड़ा कि हमारे पास इतने अवेलेबल हैं तो हम इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं तो ये एक मतलब एक बेहतर उसकी तरफ गया तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर हम इस चीज़ को
1: कंटिन्यू
4: फन फैक्टर भी था और स्टूडेंट्स ने बहुत इसको एंजॉय किया
1: माशाल्लाह। डॉक्टर तारे साहब आपसे पूछूंगा कि जो हमने जो नया प्रोग्राम BS इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस करवाया है उसके लिए आप ही किसी सजेशन पे आपने मुझे बताया था कि हम एक उस पे एक प्रीकर्सर के तौर पे एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और एक छोटा सा कोर्स भी करेंगे इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो 2 से 3 हफ्तों पे मुश्तमिल होगा वो इनिशिएटिव क्या था हमारे सामने बताइएगा।
3: यस सर ये हमने एक 3 वीक्स शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका टाइटल है नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स तो ये बेसिकली 3 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल है। इसमें फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो दैट कवर्स द इंट्रोडक्शन टू बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी एफिशिएंट कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो इसके लिए जो स्टूडेंट्स को इसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए भी एक इंट्रोडक्टरी कोर्स ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो उनके लिए इंट्रोडक्टरी कोर्स के तौर पर बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड मॉड्यूल्स में ये सेकंड मॉड्यूल गिव्स द डीपर नॉलेज टू द नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड डिवाइसेस विच आर यूज्ड फॉर द टू रिड्यूस द एनर्जी कंजम्पशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड वाइल द थर्ड मॉड्यूल विच विल बी कवर्ड इन द थर्ड वीक ऑफ द शॉर्ट कोर्स इसमें हम कवर करेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ दिस नैनो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन एनर्जी इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। सो ये एक तो 3 वीक्स का जो फुल करना चाहें शुरू से इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल से लेकर एप्लीकेशन तक और इसमें हमने ये भी फैसिलिटेट किया है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है किसी एक मॉड्यूल में या 2 में या 3 में तो वो इंडिविजुअली सिंगल मॉड्यूल में या 3ों में उसके लिए वो रजिस्टर्ड हो सकता है।
1: और इनके फ्यूचर इनके बेनिफिट्स क्या हैं थोड़ा सा बताइएगा मुख्तसर क्या फ़ायदा होगा बच्चों को।
3: बेसिकली ये इनको चूंकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है एक तो ये इनके लिए प्री रेक्विजिट हो जाएगा अगर BS प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटिंग सिस्टम वो ऑप्ट करते हैं तो उसके अलावा इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर देखा जाए जो कंसल्टेंट्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में और फिर सोलर सेल्स की इंडस्ट्रीज है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की इंडस्ट्रीज में तो उनको नॉलेज होगा उन डिवाइसेस के बारे में और वो उसको बेटर कर सकते हैं। फिर जो अपना बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो आजकल यही जो रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हैं वो उनकी नई इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो उसमें अगर कोई एंटर होना चाहता है तो उनको एक बेसिक नॉलेज ये कोर्स प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च के लिए एज सच बेसिक साइंसिस के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें ये अप्लाइड कोर्सेज उस तरह से नहीं पढ़ाए जाते तो जब आप रिसर्च के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली आपको अप्लाइड लेवल की रिसर्च करनी पड़ती है तो ये उनको रिसर्च की एक बुनियाद फराहम करता है।
1: जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर साहब आपने फिजिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके और हेड ऑफिस के साथ मिलके एक और फिर आपने एक जो है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी 2 आपके हैं आप जो काम कर रहे हैं उनको मुख्तसर बताइएगा 2 मिनट में।
4: जी इनिशियली हमने एक आरवो कंपनी है जो कि पीजीसी के साथ काम करती है. दे आर डिज़ाइनिंग वीडियो लेक्चर्स फॉर मैट्रिक एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स. उसमें जो टॉपिक्स हैं डिफरेंट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या नाइन टेंथ के, उसको एक बड़ा इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है. वो ग्लास बोर्ड है जिसके पर आप जो है वो वीडियो लेक्चर्स देते हैं, और उसकी खसूसियत यह है कि उस के साथ साथ आप उसमें एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हैं. मींस आप एक तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं और आपके साथ जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा है, और आप उसी को रोटेट करते हुए उसमें दिखा रहे हैं उसकी डिफरेंट डायमेंशन, मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जो है वो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर. तो वो एक बड़ा खूबसूरत ब्लेंड है जिसमें आप खुद से भी राइट डाउन कर रहे हैं, इसमें वॉइस भी दे रहे हैं, उसके अलावा आप खुद भी पर्सनली अवेलेबल हैं, और उसके अलावा वह एनिमेशंस और वीडियोस भी उसके साथ चल रही हैं. तो उसके साथ हमने एक शॉर्ट सा एक वीडियो लेक्चर बनाया जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर था, जिसमें आप इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी ऑफ लाइट को. तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमने उसमें, और अब हम उसको आगे लेके चल रहे हैं कि हम उसको आगे जाएं और हम पूरा जो कोर्स है अप्लाइड फिजिक्स का, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस पूरे कोर्स को जो है वो डिज़ाइन करें और उसके लेक्चर्स जो हैं उस पर डेवलप करें.
1: और एक और इंटरनेशनल आपका जो इनिशिएटिव है.
4: जी जी,
1: इंडोनेशिया के साथ.
4: जी जी, इसी तरीके से हम इंडोनेशिया एक यूनिवर्सिटी है उसके साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कुछ उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को जो है वो लेक्चर्स देंगे
1: online.
4: अभी ऑनलाइन, अभी ये इनिशियली है, तो हम 2-3 लेक्चर्स की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसकी सक्सेस के ऊपर कैसा होता है. इसी तरीके से यहाँ से मुझे नॉमिनेट किया गया है तो मैं वहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर दूंगा 2-3, तो फिर देखेंगे अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो इन द लॉन्ग टर्म हम इसको आगे भी लेके चलेंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, मजीद लेक्चर्स और मजीद कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे.
1: दैट विल बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द टू यूनिवर्सिटीज एंड बिटवीन द टू स्टेट्स.
4: यस,
1: पाकिस्तान एंड इंडोनेशिया.
4: जी जी बिल्कुल.
1: व्हिच इज अ बदली इस्लामिक कंट्री.
4: जी जी बिल्कुल.
1: राइट, डॉक्टर अलवी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ अरसे बाद मार्केट में जाएंगे फॉर सीकिंग डिफरेंट जॉब्स, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल सर, क्योंकि ये स्टूडेंट्स ही कह रहे हैं कि हमारी जो है एक किस्म का पब्लिसिटी भी है, तो मैं उन्हें बस यही एक इकबाल के एक शेर में कहूँगा, उन्हें मैसेज दूंगा कि अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा.
1: सुभान अल्लाह, बहुत आला, बहुत अच्छा. डॉक्टर तारा साहब, इस तरह मुख्तसरन.
3: जी सर, मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी कि अब आपके पास नॉलेज है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क, डोंट बी अफ्रेड ऑफ ड्रीमिंग बिग, एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट फॉर यू.
1: डॉक्टर मुदस्सिर साहब.
4: जी सर, हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स का जो है, मतलब फिजिक्स ऐसी फील्ड है जो कि हर जगह पर इम्प्लीमेंटेड है. हमने यहाँ तक देखा है कि हमारे जो बीएस के स्टूडेंट, जैसे मेरा नस का एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को देखा जिन्होंने बीएस किया फिजिक्स में और उसके बाद वो मैकाट्रॉनिक्स में जो है उन्होंने एमफिल किया, इसी तरीके से वो आगे और मेटलर्जी की तरफ चले गए. इस तरीके से बीएस फिजिक्स जो है वो हर फील्ड में इम्प्लीमेंटेड
1: है, बेसिक प्लेटफॉर्म.
4: जी, बेसिक प्लेटफॉर्म है. तो हमारे स्टूडेंट्स को बल्कि घबराने चाहिए, दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. बाहर के आप फॉरेन स्कॉलरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप एमएस के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इसके थ्रू जो है सिर्फ फिजिक्स नहीं, क्योंकि अब फिजिक्स के अलावा फिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अप्लाइड नेचर है, उसकी वजह से आप एप्लीकेबिलिटी की वजह से आप हर जगह पर जो है जहां कहीं पर भी इसका ब्लेंड मौजूद है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर सकते हैं.
1: बहुत शुक्रिया. चूंकि बीइंग एचओडी फिजिक्स, मेरा भी बनता है कि मैं भी अपने पास आउट होने वाले टू बी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम दूं. तो जैसे अलवी साहब ने मुझे एक मशल राह फराहम कर दी कि जी, इकबाल का एक शेर है कि आसमानों पर नजर रख अंजुमो महताब देख, सुबह की तामीर करनी है तो पहले ख्वाब देख. सो अपने ख्वाबों को देखिए रात को, क्योंकि इकबाल के बकौल ख्वाबों की दुनिया भी एक बिल्कुल दुनिया होती है जो एग्जिस्ट करती है. अब दोबारा से वापस जीती जागती दुनिया में आ जाते हैं. ख्वाब देखिए, उन्हीं ख्वाबों की तामीर के लिए दिन रात मुशक्कत कीजिए, मेहनत कीजिए, जाफिशानी से, ईमानदारी से, सिदके दिल से, और कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। इसी के साथ मैं अपने तीनों मेहमानों का, डॉक्टर मुजस्सर अली शाह का, डॉक्टर ताहिरा शुजा का और डॉक्टर आतिफ रहमान अलवी का मशकूर हूँ कि आप आए और हमारे आज के प्रोग्राम में आपने चार चांद लगाए। आखिर में हमेशा कहता होता हूँ, पाकिस्तान

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya.

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya.
1: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCB FM 92.6 UCB ki duniya.
2: एक नया अंदाज,
3: एक नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन,
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं एफएम 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: लेट्स गेट स्ट्रेस फ्री. ट्यून इन टू एफएम 92.6.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: worry. That's why we are here.
1: Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh nahi main janda baby tu jaan di main tera tu mere layi.
0: We are UCP ki duniya FM 92.6.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया UCB की दुनिया।

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCB FM 92.6 UCB ki duniya.
2: एक नया अंदाज,
3: एक नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन,
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: UCP की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: Let's get stress free. Tune into FM 92.6, UCP Ki Duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन।

0: लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया में, यूसीपी की दुनिया
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB की दुनिया में.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अली हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ FM 92.6 UCP की दुनिया में। और हम आपके सामने लेके आए एक प्रोग्राम जिसका नाम है उम्मीदें नो, और आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों और कैसे यूथ डीमोटिवेट हो जाती है। और इसी के साथ मेरे साथ एक को होस्ट और गेस्ट मौजूद हैं, अनम इलियास, जिनका ताल्लुक है LLBC और वो फाइनल सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ उनकी हॉबीज़ हैं मीडिया में काम करती रहती हैं, थिएटर करती हैं, प्लेस करती हैं, डिफरेंट कमर्शियल्स में काम करती हैं, ड्रामास वगैरह करती रहती हैं। तो हम चलते हैं अनम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि क्यों और कैसे हमारी आज की यूथ डीमोटिवेट है। जी अनम।
3: वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे इतनी इज्जत बख्शी। और दूसरा, आपका जो क्वेश्चन है कि भाई आज का नौजवान जो है वो इस तरह डीमोटिवेट क्यों है, तो इसकी एक बेसिक वजह ये भी है कि जैसे ही उसकी एक लाइफ में चेंजिंग पाथ आता है जिसमें उसने अपना कैरियर, अपना फ्यूचर प्लान करना होता है, तो वो रेदर देन उसका अपने डिसीजन के अलावा समटाइम्स उसकी फैमिली के डिसीजंस होते हैं उसके ऊपर, जिसके ऊपर वो उस तरह वर्क नहीं कर पाता, वो हार्ड वर्किंग शो नहीं करवा पाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही डिवेलप नहीं होता कभी भी। वो डिग्री तो ले लेता है, इवन वो हायर CGPA भी लेगा, बट वो उस तरह उसको एज अ प्रैक्टिकल फील्ड में क्रिएटिव नहीं हो पाएगा जिस तरह अगर वो अपनी च्वाइस या अपने मेंटेलिटी, अपने माइंडसेट के हिसाब से जाता। अब आप एक आर्ट्स के स्टूडेंट के इंटरेस्ट को, जिसको जिसका हॉबी या इंटरेस्ट जो है आर्ट्स से रिलेटेड है, उसको आप किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में डाल दे, तो नो डाउट वो डिग्री तो लेके ग्रेजुएट हो जाएगा, बट वो उस तरह अपनी डिग्री को परस्यू नहीं कर पाएगा इंजीनियरिंग को।
2: बिल्कुल ऐसे ही है अनम, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सेटिस्फाइड हूँ। और होता भी ऐसे ही है कि डिग्री फैमिली की तरफ से इम्पार्ट की जाती है बच्चों पे, उनसे नहीं पूछा जाता कि उनकी हॉबीज क्या हैं, उनका पैशन क्या है, या वो किस डिग्री में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनको समझाया जाता है कि आजकल डॉक्टर्स अच्छा कमा रहे हैं तो तुम मेडिकल फील्ड में चले जाओ, आजकल लॉयर्स एक उनका अच्छा फेम है सोसाइटी में तो आप लॉ कर लो। सो उन पे एक इम्पार्ट की जाती है डिग्री। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सेटिस्फाइड हूँ, ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में। और अनम, आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में जो आजकल एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ लोग हैं और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, सो आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में रियल इन्फ्लुएंसर्स कौन है आज के दौर में?
3: अभी जैसे आपने मेंशन किया कि डिग्री आप चूज करते हो पैसे की बेस पे, भाई किस में आपको अर्निंग ज्यादा होगी, आपका लाइफ स्टाइल लग्जूरियस कैसे होगा, आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तो इसी तरह ही है कि इन्फ्लुएंसर भी लोगों ने अब उसी को ही समझ लिया रेदर देन नेशनल हीरोज के, भी जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो टिकटॉकर्स हैं बहुत फेमस है, जिनके फॉलोइंग इन अ मिलियंस है, आर यू कैन से के मोर देन मिलियंस है, तो उनको वो इन्फ्लुएंसर समझने लग जाते हैं। आप आज के बच्चे को पूछ लें आपने फ्यूचर में क्या बनना है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, या फिर मुझे टिकटॉक पे, या मुझे ना इतने फॉलोअर्स चाहिए इंस्टा पे, फेसबुक पे।
2: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सेटिस्फाई करता हूँ। बात यह है कि आज के दौर में अगर हम देखें तो चाइल्ड यूट्यूबिंग भी बहुत ज़्यादा है। एक बच्चा है और वो यूट्यूबिंग स्टार्ट करता है, यूट्यूबिंग की तरफ आता है, तो वो देखता है ये चीज़ कि देखें उसने मेरी एज के लड़के ने अपने लाइफ स्टाइल को कितना चेंज कर दिया है यूट्यूब से पैसे कमा के, या सोशल मीडिया किसी डोमेन से भी पैसे कमा के उसने अपनी जिंदगी को कितना बेहतर कर लिया, कार ले लिया, अच्छा घर ले लिया एक अर्ली एजेस में। सो इस की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपने वक्त की ज़रूरत है या जो ज़माने की ज़रूरत है, उस डिग्री से हट के, उन कामों से हट के या पढ़ाई से हट के सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन की तरफ बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या आपको भी ये लगता है कि अर्ली एज में यूट्यूब पे आना या अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आना, क्या ये हमारी यूथ को ख़राब कर रहा है?
3: जी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ का कोई एक पॉजिटिव साइड भी होती है और एक नेगेटिव साइड भी होती है। डिजिटल लिटरेसी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम इसको ना नहीं कर सकते कि हमने जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको भी कम्पीट करना है, अदरवाइज हम बहुत अंडर डेवलपमेंट में रह जाएंगे, बिकॉज वी आर آلریڈی ان انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری. تو اگر ہم اسی چیز کو اگر نگلیکٹ بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ چیز ہے کہ یہ پیرنٹس کو کنسیڈر کرنی چاہیے کہ اگر وہ ایک 6 سال 10 سال کے بچے کو یوٹیوبنگ سکھا رہے ہیں, بیکاز آپ دیکھیں گے بہت سارے انڈر ایج ہیں جن کا ایون اکاؤنٹ لیگل بھی نہیں کنسیڈر ہو سکتا اگر وہ خود پہ آئے تو ان کو یوٹیوبنگ کی طرف آپ لے کے آ رہے ہو تو ان کا برین ایکسپوئر یا سوسائٹی ایکسپوئر کیا ہوگا؟ ان کو بیسک نالج نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, ان کو بس یہ پتا ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے اتنے فالوورس ہونے چاہیے, کس طرح ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کو اپنی ویڈیوز کے اوپر. تو ان کا جو ایک ایز اے چائلڈ جو ہماری چائلڈ میموریز ہوتی ہیں, جو ایک فیملی ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا سویٹ میموریز ہوتی ہیں نا, کیونکہ بچپن کبھی واپس نہیں آتا.
2: یہ
3: سب کہتے ہیں, میں بھی کہتی ہوں, میں مانتی بھی ہوں اس بات کو کہ بچپن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سے ایک لائف کا نا, یو کین سے کہ میرا تو فیوریٹ پارٹ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سبھی کا ہوتا ہے. تو آپ ان کو اس طرح ڈیجیٹل میں ڈال دیں گے, ان کو یہ کر دیں گے کہ آپ نے ویڈیو شوٹ کرنی ہے, وہ جہاں جائیں گے بھی آپ نے یوٹیوبر, اگر آپ کسی بچے یوٹیوبر کو دیکھ لیں وہ جہاں جائیں گے وہ ولاگنگ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ اپنا ڈے ولاگ کر رہے ہوں گے, تو وہ انجوائے کب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی زندگی جی کب رہے ہیں.
2: ایسی ہے, بالکل انم, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر ہم اپنے بچپن پہ ہی تھوڑی سی روشنی ڈالیں جس ایج فیکٹر سے آپ یا میں ہوں, تو ہمارا ڈیجیٹل ڈیوائسز سے اتنا ہی رابطہ ہوتا تھا کہ دن میں ایک دفعہ اٹھ کے وہ جی ٹی اے کا ایک پرانا ورژن ہوتا تھا, اس میں گاڑی کو بھگا لینا اور گیمز کھیل لینا. لیکن آج کے دور میں دیکھیں تو اگر ایک بچہ ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا, تو اس کی مدر اس کو جب تک موبائل پہ ساتھ کارٹونز لگا کے پاس نہیں رکھیں گی وہ کھانا نہیں کھائے گا. سو ہم میں سمجھتا ہوں کسی حد تک جو پیرنٹس ہیں وہ بھی بچوں کو ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں, ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں جس میں بچوں کو عادت ہوگی ان ڈیجیٹل ڈیوائسز کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمارا گناہ زیادہ ہے ان ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ بچوں کو کنیکٹ کرنے میں, یا بچے خود آج کل دیکھ دیکھ کے ڈیجیٹل ڈیوائسز سے زیادہ کنیکٹ ہو رہے ہیں؟
3: اس میں گناہ تو نہیں میں کہوں گی, لیکن غلطی سم ہو ہماری ہے, کیونکہ اب جب ایک گھر میں پیرنٹس بھی فون پہ ہوں گے, آپ دیکھ لیں ہمارا ایون موبائل یوز ٹائم زیادہ ہوگا بچوں سے, کہ ہم انسٹا فیس بک اسکرول کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو اکاؤنٹس بنا کے اگر دیے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہوتی ہے, اگر بچے اگر ہم ان کو یہ نہیں دکھاتے کہ بھائی آپ کی ابھی ایج نہیں ہے, ٹھیک ہے, آفٹر 18 یو ول ہیو اپرچونٹی کہ آپ اس کو اویل کرو, آپ جو چاہے اس پہ یوز کرو, آپ نے ولاگنگ کرنی ہے جو چیز کرنی ہے کرو, بٹ ایٹ انڈر ایج نہیں, ابھی آپ کی ایج نہیں ہوئی. اب یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی اگر ایک چیز یوز کرنی آتی ہے, اگر کسی بچے کو گاڑی کی سینس آ گیا تو آپ اس کو ہوتے ہیں نا 12 سال کی عمر میں گاڑی دے کے بول دیں چلو ٹھیک ہے ڈرائیونگ شروع کر لو تم, ٹھیک ہے ڈرائیونگ کر سکتے ہو.
2: بالکل ایسے ہی ہے, اور ہم نے جو بیسک تربیت لینی ہوتی ہے وہ اپنے پیرنٹس کی ہیبٹ سے ہی لینی ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے بات کی اور آپ نے بڑا اسٹرانگ پوائنٹ رکھا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جیسا دکھا رہے ہوتے ہیں بچے اسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. سو اس سے آگے ہم کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیوں اتنی یوتھ پچھلے ایک سال میں پاکستان کو چھوڑ کے جا چکی ہے. سو اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक। और आप सुन रहे थे FM 92.6 UCP की दुनिया से एक न्यू प्रोग्राम जिसका नाम है उम्मीदें नौ। और हमारे साथ मौजूद थी अनम इलियास। तो बात को कंटिन्यू करते हैं और अनम से पूछते हैं कि जो जैसे हम बात कर रहे थे रियल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, सो अनम आपको लगता है कि जो एक मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और हम देखते हैं कि वो एक रिकॉर्डेड पॉपुलेशन है जो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुकी है, सो आपको लगता है कि वो इतना फिगर बड़ा जो पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं वो क्या किससे इन्फ्लुएंस होके जा चुके हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स बदल चुके हैं, हमारी सोच बदल चुकी है। पहले हम किसी और को फॉलो करते थे, आज की यूथ जो है वो किसी और को फॉलो करती है। तो आपको क्या लगता है वो किन को देख के इस मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं?
2: मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी एक तो बाहर गई हुई कम्युनिटी है, एक तो उनसे वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, और दूसरा ये कि उनकी जो रिमेनिंग फैमिली होती है उनके लाइफस्टाइल से, कि भाई अब जैसे हमारे इधर कॉन्सेप्ट होता है कि एक फैमिली का एक बंदा बाहर गया तो उनके हालात बदल जाते हैं। आजकल की सोसाइटी का क्या माइंडसेट है कि आपकी फैमिली में से एटलीस्ट कोई एक बंदा बाहर के मुल्क में होना चाहिए ताकि आपको डॉलर्स पाउंड्स में इनकम आती रहे। तो आप पाकिस्तान में ना एज अ लग्जूरियस लाइफ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता पाकिस्तान।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल।
2: और इसमें आपने जो एक स्टेटमेंट मुझे दी थी कि इतनी पॉपुलेशन की जो नंबरिंग है वो इतनी है कि वो आजकल हमें पाकिस्तान में एज अ क्राइसिस फील होनी चाहिए, तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो PID है ये एक इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। इनके मुताबिक 37% जो पाकिस्तानी है दे अर्ज टू लीव पाकिस्तान ऑन द बेसिस के भाई उनका लाइफस्टाइल जो है ना वो बेटर हो जाएगा, उनके पास वो उनकी ड्रीम कार्स होंगी, ड्रीम हाउसेस होंगे, इस बेसिस पे वो फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं कि भाई। लेकिन उनको ये नहीं आइडिया होता कि फॉरेन जाके आप उधर कई बार हमेशा आप पे अल्लाह मेहरबान नहीं होता, कई बार आप ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है आपको, आपकी लाइफ इतनी इजी होने के बजाय हार्ड हो जाती है।
1: बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जिनमें डिस्कस किया जाता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और बिजनेस हब समझा जाता है पाकिस्तान को। बाहर से लोग आके यहाँ बिजनेस करते हैं और इतनी अपॉर्चुनिटीज से भरे हुए बहुत से शहर हैं। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, कोई भी आप इंडस्ट्री वहाँ स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छी ग्रो कर सकती है। ऐसे मल्टीपल पाकिस्तान में ऐसे शहर हैं जहाँ पे देखें आप एक यूके कोई जा रहा है नौजवान, पहले यूके जाएगा, उसको वहाँ सेटल होते होते 5 से 7 साल लग जाएंगे आराम से, ठीक है। वो 5 से 7 साल वो जो अपनी एक हैंडसम अमाउंट 50-60-70 लाख रुपया भर के वो जो बाहर जा रहा है यूके जा रहा है, वही अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके बिजनेस करे तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकता है जो वो वहाँ करना चाह रहा है। सो आप ये समझती हैं क्या कि पाकिस्तान ये जो नौजवान बाहर जा रहे हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इनको नहीं चाहिए कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके अपने लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें?
2: कोर्स, लेकिन ये वहीं पे बात आ जाती है ना कि अगर आप लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है, उनको लगता है कि भाई अगर वो बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो वो उनको डॉलर पाउंड्स में इनकम आएगी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो इना रुपीज आएगी, तो उसका यार क्या फ़ायदा ना, वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, एक बात है, ठीक है, कि हमारे पास रातों रात ये भी आ जाए। आजकल के जनरेशन में और इवन आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो हमारे बड़े हैं उनमें भी सब्र नहीं है, ठीक है, उनको बस रात और रात हर चीज चाहिए, भाई ये चीज सोच ली है तो ये मेरे पास कल ही होनी चाहिए।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, और सब्र और यकीन बहुत बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह अनफाल में कि अगर इंसान सब्र और शुक्र के साथ चले तो वो इंसान कम वक्त में वो उन चीज़ों को अचीव कर सकता है जो उसने कभी सोची ही नहीं होती। सो आप क्या समझती हैं कि यूथ को सब्र के साथ अपने प्रोग्रेस को कंटिन्यू करना चाहिए और इन फेक इन्फ्लुएंसर्स से जो कि अपनी बाहर की ज़िंदगी की देखें, मैं ये समझता हूँ, मैंने आजकल देखा है बहुत से मेरे फ्रेंड सर्कल में भी शायद ऐसे लोग हों जो आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होते हैं, वहाँ लेबर में काम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में लेबर में काम करना पसंद नहीं करते, वहाँ लेबर में काम कर रहे होते हैं लेकिन वो जो डिनर करें کریں گے یا وہ اپنی اپنے دو منتھ تین منتھ کی بیزی لائف میں سے جب وہ دو دن کے لیے اسپینڈ کریں گے اپنی ویکیشنس کو, تو ان کی وہ اسٹریکس اور وہ انسٹا پہ اسٹوریز, فیس بک پہ اسٹوریز اور اسٹیٹس واٹس ایپ پہ. سو اس سے بہت سے نوجوان جو پاکستان میں موجود ہیں, جو جن کے پاس اپرچونیٹیز بھی ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ انسیٹسفائڈ لائف گزار رہے ہیں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو باہر آؤٹ آف کنٹریز میں لوگ رہ رہے ہیں, جو ان کے دوست یا ان کے فرینڈ سرکل یا ان کی فیملی میں سے جو لوگ باہر جا چکے ہیں, سو وہ اچھا وہاں پرفارم کریں, وہاں اچھا ارن کریں, وہاں بہت اچھی لیونگ اسٹائل کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. سو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کس حد تک حقیقت ہے کہ وہاں پہ جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کیا وہ ریئل لائف ہمیں نظر آتی ہے جو ہمیں واٹس ایپ اسٹیٹس اور اسٹوریز وغیرہ پہ نظر آتی ہے؟
2: میرے مائنڈ سیٹ سے وہ ریئل ان کی ہو بھی سکتی ہے, یہ تو بلّہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی ریئل ہے یا نہیں. بٹ ہماری سوسائٹی یہ ضرور دیکھتی ہے کہ ان کے پاس گاڑی ہے, وہ اس طرح کی لائف انجوائے کر رہے ہیں, بٹ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ان کے پاس فیملی نہیں ہے ادھر, وہ اکیلے ہی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فیملیز کیا ہوتی ہے, لائک فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا کیا ہے, آپ کا کوئی تہوار آ گیا ہے, وہ آ رہے ہیں واپس کے نہیں آ رہے, اس سائڈ پہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے, دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ باہر کی وہ لائف اسٹائل انجوائے کرنا چاہتے ہو تو آف کورس پھر اپنی فیملی بھول جاؤ. ٹھیک ہے, پھر وہ آپ 10 سال 15 سال بعد کبھی فیملی سے ملو گے, آپ کی فیملی آپ کو نہیں پہچان رہی ہوگی, ان کو آپ کی ہیبٹس, آپ کی عادات اور آپ کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوگا جتنا اب پتا ہے. جب آپ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہو تو آپ کو فیملی کی زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یار ہماری فیملی کیا ہے, پیچھے کیا کر رہی ہے, کس طرح رہ رہی ہے, کس طرح پرفارم, ریدر دین آپ کی کیا صرف یہی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے انہیں پیسہ دینا ہے یا پھر ان کو لائف اسٹائل مینٹین کرنا ہے, آپ کی اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں بنتی فیملی پہ.
1: بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اور مین میں سمجھتا ہوں ڈی موٹیویشن کی وجہ یوتھ کے لیے یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی فیک لیونگ سٹائل کو دکھا رہے ہوتے ہیں, اپنی دکھ بھری کہانی وہ نہیں دکھاتے کہ کیسے وہ مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں. تو بالکل جی, جو ہماری آڈینس ہیں ان کو بالکل ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت اچھے اور ایسے سلیوشن جس سے آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور سیٹسفائنگ لائف گزار سکتے ہیں. وہ سلیوشنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ملتے ہیں ایک

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: ویلکم بیک جی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا کے ساتھ سے میں علی حسن آپ خدمت میں حاضر ہوں اور پروگرام ہمارا چل رہا تھا امید نو کے نیم سے اور انم میرے ساتھ موجود ہیں اور اب ہم جانے والے ہیں سلیوشنز کی طرف کہ کیسے اور کون کون سے وہ سلیوشنز ہیں جن کے تھرو ہماری جو یوتھ ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے زندگی میں اور زندگی میں کچھ بہتر کر سکتی ہے. تو انم آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس بات سے کتنا سیٹسفائڈ ہیں اور کتنا ایگری کرتی ہیں کہ لرن بائی ڈوئنگ ورک کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟
4: جی علی, لرن بائی ڈوئنگ جو آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ یوز کی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے. اب جیسے ہم اسٹوڈنٹس کو اگر کنسیڈر کریں, میں اس سے فلی ایگری کرتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے, ہمیں ڈیجیٹل لٹریسی کی طرف جانا چاہیے, نیو اسکلس لرن کرنی چاہیے. اب ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس کلاسز لینے کے بعد کافی فری ٹائم ہوتا ہے, تو ریدر دین کہ وہ اس کو فرینڈس میں ویسٹ کرے, آؤٹنگ میں, وہ کبھی کبھار ہوتی ہیں, ہونی بھی چاہیے, ایسی گیدرنگس ہونی چاہیے, بٹ ان اے یوزول بیسس پہ اب آپ دیکھیں گے فضول میں اسٹوڈنٹس بیٹھے رہتے ہیں, تو ان کو ایز اے اپنا ٹائم جو ہے وہ یوز میں لاتے ہوئے کوئی نیو اسکلس لرن کرنی چاہیے جو مے بی ان کی ڈگری میں کل کو انہیں کام آئیں گی, جیسے ڈیجیٹل گرافک ڈیزائننگ کی اسکلز ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ کی, فری لانسنگ ہے. تو اس طرح انہیں یہ نیو اسکلز نا اپروچ کرنی چاہیے. اور اس کا موٹیو میرا بالکل یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے کوئی نیو اسکلز لرن کریں, وہ اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے بھی لرن کریں. اب فری لانسنگ میں اب کوئی انجینئر بھی اپنی اسکلز کا پرفارم کر سکتا ہے, اپنی ڈگری کو پرسیو بھی کر سکتا ہے, ایون کہ وہ ریدر دین ان اے بینگ ان اے فیلڈ, فیلڈ میں جانے سے پہلے ہی وہ تھوڑا سا ٹرینڈ ہوگا, جیسے اس نے انٹرنشپس کی ہوں گی, اس کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا, اس کی اسکلز انہینس ہوں گی, تو مے بی اس کے لیے کل کو سوسائٹی میں جا کے ایز اے انجینئر کام کرنا زیادہ بہتر رہے گا, اس کے لیے آسانی سے وہ کر سکے گا. ایسی لاء میں بھی ہے کہ لاء میں اگر وہ اپنا جو ہے کیریئر پرسیو کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اگر فری لینسنگ میں جاتا ہے تو وہ لوگوں کو لیگل ایڈوائس دے سکتا ہے, انٹرنشپس کر سکتا ہے, اس کے بعد وہ ڈفرینٹ فرمز جوائن کر سکتا ہے انٹرنشپ کے لیے, تاکہ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ایک پریکٹیکل لائف کا ویو لے لے کہ بھی مجھے کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, تو مجھے کیا کیا اسکلس پہلے ہی آنی چاہیے, کیونکہ ان اے پریکٹیکل فیلڈ آپ کو پتہ ہے بہت کمپٹیشن ہوتا ہے, کیونکہ آلریڈی ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تو اپنی جگہ آپ تبھی بنا پاؤ گے جب آپ کے ہاتھ میں کوئی اسکلز ہوں گی, ٹھیک ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اور یوتھ ہے نا, اس کو لرن بائی ڈوئنگ کی طرف جانا چاہیے, اپنے آپ کو ڈیجیٹل لٹریٹ کرنا چاہیے کہ ان کو ڈفرینٹ اسکلس لرن کرنی چاہیے. اور اس میں اب تو بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں, گورنمنٹ اور پرائیویٹ, جو کہ اس کو فری بھی سکھاتے ہیں, اینڈ ایون اگر کوئی فائنینشلی اسٹیبل ہے تو وہ ان اے بیٹر انسٹیٹیوٹ بھی, کیونکہ بیٹر تو سبھی ہیں, بٹ کچھ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں انسٹیٹیوٹ سے کرنا ہے, تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے.
3: بالکل ایسے ہی انم, بالکل آپ نے 100% ٹھیک کہا. اور یہ بات ہے کہ اگر ہم پارٹ ٹائم بھی اپنی پروفیشنل زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی ڈگریز کے ساتھ ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ ہم دن میں صرف 2 گھنٹے بھی اگر کسی ایک اسکل کو بھی دیتے ہیں, جیسے کہ میرا تعلق فیس بک مارکیٹنگ سے ہے, تو مجھے یاد ہے کہ میں 9th class میں صرف 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اس چیز کو دیتا تھا کہ کیسے میں فیس بک پہ کوئی چیز بیچ سکتا ہوں یا کیسے سیل کر سکتا ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے فرسٹ ٹائم ایک کار کا ایڈ لگا کے ٹیسٹ کیا تھا. سو ہماری ایکٹیویٹیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرینڈ سرکل بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. انسان کے پاس 2 آپشنز ہیں, ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے پاس بیسٹ آپشن ہے کہ وہ جا سکتا ہے, اب بیٹھے کمپیوٹر لیبز میں بیٹھے, اگر وہ میڈیا فیلڈ سے ہے ریڈیو اسٹوڈیوز وزٹ کرے, لاء سے ہے وہ مختلف ایڈوکیٹس کے چیمبرز کو وزٹ کرے, ان کی بیٹھ کے ڈسکشن سنے. سو اپنی اسکلز, نیو اسکلز کو بے شک اپنی ڈگری کے اکارڈنگ بلڈ کرے, لیکن کرنا چاہیے. سیکنڈ آپشن اس کے پاس بڑا واضح ہوتا ہے کہ وہ کلاس لے, کلاس لینے کے بعد اپنے کلاس کے دوستوں کے ساتھ جائے, چائے کیفیز پہ بیٹھے, وہاں بیٹھ کے چائے پیے, وہاں گپ شپ لگائے اور اپنا دن ضائع کر دے. تو میں سمجھتا ہوں مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کو پرفارم کرنا چاہیے, دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے, لیکن अपने पूरे दिन में कुछ ऐसा वक्त रखना चाहिए जो आप कुछ प्रोडक्टिव करें, कुछ ऐसा करें जिससे आप फ्यूचर में कुछ बेहतर कर सकें। सो अनम, आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ ठीक है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, क्योंकि अगर एक किसी का ताल्लुक लॉ से है या किसी का ताल्लुक किसी और फील्ड से है, इंजीनियरिंग से है, सो आपको क्या लगता है कि आज क्या वक्त की ये ज़रूरत है कि हमें एक इंजीनियर या एक लॉयर को भी साथ साथ मीन्स एक दिन में 2 से 3 घंटे दे के फ्री लाउंसिंग की फील्ड से पैसे कमाने चाहिए?
4: आई एग्री विद इट कि भाई अगर एक स्टूडेंट है तो वो उसके पास अगर टाइम है, क्योंकि मोस्टली 1-2 घंटा निकालना वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप 24 घंटों में से आप मैनेज कर सकते हो, आप थोड़ा अपना लेयर टाइम जो है उसको थोड़ा मिनिमाइज करके 1-2 घंटे तो इज नॉर्मल थिंग, आप ऐसे वेस्ट कर देते हो इंस्टाग्राम वगैरह स्क्रोलिंग में, तो आपको कुछ न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए और एट द एंड वो फाइनेंशियली आपको हेल्प। आजकल की जनरेशन का एक सबसे मेजर होना भी यही है कि भाई उसको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसको इंडिपेंडेंट होना है घर से, उसको ना लाइक पैसे नहीं लेने कि उसके अपने कमाई आनी चाहिए उसके हाथ में। तो वो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस तरह स्टडीज़ के साथ साथ थोड़ी माइनर सी एफर्ट्स करेगा इन सीखने में, न्यू स्किल सीखने में, तो वो उसके लिए बेटर होंगी और उसको कल को फील्ड में भी काम देंगी एज वेल एज उसको फाइनेंशियली भी स्टेबल। तो ये बहुत बेस्ट रहेगा अगर स्टूडेंट्स जो है, यूथ जो है, वो इस बात की इसको इम्पोर्टेंट लेंगे कि ये बहुत इनिशियल स्टेप है जो उनको लेना चाहिए अपनी स्टडीज में, इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज को।
3: बिल्कुल ऐसी है। और अनम, अगर आप देखें कि न्यू आइडियाज़ की जो क्रिएशन है, ये न्यू आइडियाज़ हमारी यूथ में आना ख़त्म क्यों हो गए हैं या कम क्यों हो गए हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं डिजिटल डिवाइसेस के साथ। हम दिन रात हम अगर देखें अपना सर्कल तो हमारा स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटों पर चला गया है। हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं रील्स वॉचिंग में और इन चीज़ों में, हम कुछ क्रिएटिव नहीं देख सकते। मैं कल रात ही एक दोस्त के पास बैठा था तो वो मुझे एक मीम दिखा रहे थे, तो फनी तो थी लेकिन उसमें एक बड़ी मोटिवेशनल चीज़ मुझे देखने को मिली और सुनने को मिली, मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। कि वो मुझे कहते हैं कि ये देखो यार मीम में वो क्या कह रहा है कि एक अगर न्यूटन बैठे होते उस टाइम जब उनके ऊपर एक एप्पल गिरा और उनको ये ख्याल आया ग्रेविटी का सब, तो अगर वो उस टाइम रील्स देख रहे होते या वो इंस्टा पे लगे होते तो उनका उस तरफ ख्याल ही नहीं जाना था कि सेब क्यों गिरा, और मतलब वो गिरने के बाद वो ना सोचते कि ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है। वो फ्री बैठे थे, फ्री बैठे तो उनके माइंड में एक न्यू आइडिया आया कि यार ये सेब क्यों नीचे की तरफ ही क्यों गिरा है, तो उन्होंने ग्रेविटी की इन्वेंशंस की तरफ वो मूव ऑन किए। सो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अपनी ज़ात के लिए जो वक्त है वो निकालना हमने ख़त्म कर दिया। तो क्या आप इस बात से एग्री करती हैं कि आज के दौर में हम अपने लिए वही वक्त बस निकालते हैं जो हम 2 से 4 घंटे सो रहे हैं, उसके अलावा हम अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं निकालते, ना हम जॉगिंग करते हैं, ना हम पार्क्स में बैठते हैं, ना हम लाइब्रेरी को वक्त देते हैं, ना हम किताबों को वक्त देते हैं, ना हम अपनी ज़ात की तरक्की के लिए काम करते हैं? तो क्या आप इस बात से सेटिस्फाइड हैं?
4: ऐसा ही है, आजकल अगर आप देखने तो डिजिटल इतना को माइंडसेट माइंड पे बैठ गया हुआ है डिजिटली कि भाई फ़ोन होना चाहिए आपके, आपका फ़ोन 2 मिनट चार्जिंग पे लग जाए तो आप पैसे फ्री होते हो, अब क्या करें, अब क्या करें हम ना अगर फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया या लैपटॉप लगा, और यही अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप किसी को बोलोगे ये आर्टिकल पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, तो वो क्या सोचेंगे, इससे अच्छे हम कोई मूवी देख लेते हैं, ठीक है, दे विल नॉट एडमायर इट कि चलो यार कोई बुक पढ़ लेते हैं, ठीक है कोई नॉलेज की बात होगी उसमें, लेकिन उनको फजूल में टाइम वेस्ट करना पसंद होगा, वही टाइम वो क्रिएटिव वे में यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। वो अब आप ये भी कह सकते हो कि वो आलसी भी हो गए या फिर वो सिर्फ कहते हैं कि हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको कर नहीं रहे, ठीक है, एक्शंस भी रिक्वायर होते हैं, सिर्फ बात करने से कोई काम नहीं हो जाता, अभी हम बात कर रहे हैं तो इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा अनलेस कि वो जो सुनने वाले हैं या फिर जो हम हैं खुद इस पे एक्शन नहीं लेंगे अपनी बात पे, कि भाई हमें अब वाकई में अपने बारे में सोचना चाहिए, वी शुड कंसर्न आवर सेल्फ के हमारी बेहतरी किस में, वो रेदर देन कोई न्यू स्किल सीखने में है, कोई नया काम, कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने में है, आप अपनी हेल्थ की फिक्र करें। अब आप एक स्टूडेंट को देख लें, वो क्या करेगा, सुबह उठेगा, यूनिवर्सिटी आएगा, क्लासेस लेकर जाके उसने स्कूल से लेट जाना है और मूवीज़ देखनी है, सुबह फिर वो उठेगा फिर आ जाएगा, वो उसकी एक्सरसाइज की रूटीन और उसकी वो फ्रेंड सर्कल्स में बैठना, न्यू स्किल्स सीखना, ये किसी साइड पे नहीं आएगा कि वो कोई क्रिएटिव काम करे। और फिर बाद में स्टूडेंट्स क्या कंप्लेन करते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, तो डिप्रेशन तो होगा ना जब आपकी लाइफ सिर्फ स्क्रीनिंग पे डिपेंड कर रही है।
3: बिल्कुल ऐसी। और स्टूडेंट्स कहते हैं हमारी डिग्री की कोई वर्थ नहीं है पाकिस्तान में, हमारी डिग्री की वर्थ नहीं है। वो वर्थ कैसे हो डिग्री की जब आपने उस डिग्री से कुछ सीखा ही नहीं। यही डिग्री आप सेम बैक टू द टॉपिक आ रहे हो कि आप वापस किसी और आउट ऑफ कंट्री जाके सीखते हैं, तो वो आपको जब प्रैक्टिकल स्टडीज करवाते हैं तो आप कहते हैं कि डिग्री की बड़ी वर्थ है, बड़ा कुछ हमने सीखा है। तो आप यहाँ पे सीखें, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही होती हैं। आपकी डिग्री के ड्यूरिंग आप मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, उन इंटर्नशिप्स को करें और सीखें कि आप क्या इस स्किल से कैसे अर्न कर सकते हैं, अपनी फील्ड में कैसे अर्न कर सकते हैं। और एट द एंड एक पॉइंट ही आता है अर्निंग का, ठीक है। तो अब मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़ात पे ये चीज़ आजमा के देखी है कि एक नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट क्या वो वाइब होती है। कि मैं एक नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट था और मैंने जब पहली दफ़ा 30,000 रुपया कमाया था, मुझे आज भी याद है, तो वो 30,000 जब मैंने जाके अपनी मदर के हाथ में रखा था तो वो एक अलग ही एक वाइब होती है, एक इंसान में एक अलग बात होती है कि यार मैं इतना छोटा हूँ और मैंने पैसे कमा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। सो एक अच्छी फीलिंग होती है, ठीक है। साथ ही साथ स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया, ठीक है। आप अपने एम्स को छोटा नहीं कर सकते, आप अपनी बेसिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकते कि आप LLB कर रहे हैं और आप कहें कि यार मैं साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूं। फ्रीलांसिंग से आप लाख, दो लाख, तीन लाख कमाना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कहते हैं कौन LLB, कौन सी मेरी डिग्री, मेरी तो फील्ड ही है। नो, नॉट एट ऑल। ये वो काम है जिनको आपको साथ करना है और आज वक्त की ज़रूरत है। आज एक इंसान घर नहीं चला सकता, घर चलाने के लिए, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको मल्टीपल काम करना पड़ते हैं। तो अनम, आपको क्या लगता है कि आज के हमारे सेशन के बाद क्या यूथ और हमारी ऑडियंस जो सुन रही है वो मोटिवेट होंगी और वो न्यू स्टार्टअप लेंगी?
4: मेरा ख्याल है इंशाल्लाह अगर उन्होंने अपने बारे में या अपना फ्यूचर ब्राइट रखना है तो वो ज़रूर इस पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उनको इसकी वैल्यू भी कंसिडर करनी चाहिए कि आजकल के दौर में मल्टीपल इनकम सोर्सेज होनी चाहिए, ठीक है, रेदर देन के फैमिली का कोई एक फर्द ही कमा रहा हो। तो ये आजकल का मेजर इशू है, ठीक है। तो इस पर यूथ को वाकई में ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए और उनको इस पर इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए कि भाई हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। थैंक यू सो मच।
3: बिल्कुल अनम, बिल्कुल वेलकम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा अनम। और प्रोग्राम का इख्तिताम एक नहायत ज़रूरी मैसेज से करना चाहूँगा कि आज ही, कल पे मत छोड़ें, आज ही ये सोचें कि आपको कुछ करना है। और करने में जो मेन और बेसिक और पहली हर्डल जो आप फेस करेंगे वो आपकी अपनी डिजिटल डिवाइसेस, आपका मोबाइल फ़ोन होगा, आपके टैब्स, आपके लैपटॉप, जो आपके नेटफ्लिक्स के नाम पे और डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम पे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इनसे दूर हों, स्किल्स की तरफ आएँ, फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। और यकीन माने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अपनी आंखों के पर्दे खोलें और देखें कि बाहर हो क्या रहा है और उसको अवेल करें, अपनी गैदरिंग चेंज करें। और एक बहुत ही फेमस मिस्टर एडवर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी सेइंग है कि चेंज योर टेबल व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइंग विथ योर लाइफ। तो अगर आप अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड नहीं है तो आज ही अपने टेबल को चेंज करें। टेबल को चेंज करने से मुराद है अपनी गैदरिंग को चेंज करें, अपनी महफिल को चेंज करें। प्रोडक्टिव दोस्तों में बैठें, प्रोडक्टिव लोगों में बैठें, उन लोगों में बैठें जो आप में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकें। आप में नेगेटिव चीज़ें इम्पार्ट करना, आपको बुरी महफिलों की तरफ ले जाना, आपको डीमोटिवेट करना और आपको ये फील करवाना कि आपने कोई गुनाह कर दिया पाकिस्तान में पैदा होके, तो ये इस तरह के लोगों से बचें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव करें और सब्र और यकीन के साथ बस मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर रहे और आपको आपकी मेहनत का अजर इंशाल्लाह आज नहीं, कल नहीं और नज़दीक फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह आप अपने रिजल्ट्स देखेंगे कि वो इम्प्रूव होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपने मेहमान अली हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।

है मेरा के अपने ही अक्से में छुपसा गया हूँ। जक्सा मैं सबसा बनता ही जाऊँ, ऐसे ही कैसे मैं धसता ही जाऊँ, ऐसे ही कैसे मैं मरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ, बिखरता ही जाऊँ।

एक मदद मेरी मदद मुझे दे दो मेरी कदर सारी हदें करूं खत्म मैं बताऊं मैं हदफ मैं तो पूरी करूं कसर मुझे अपनी बात का असर मुझे मालूम मेरे अजम मैंने खाई उससे कसम मैं नहीं हूंगा मध्यम मैं नहीं हूंगा मध्यम मैं नहीं हूंगा मध्यम मैं नहीं हूंगा मध्यम।

0: 6, बोरियत को भगा दो।
1: Yes.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یوسیپی.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम, आपके अपने प्रोग्राम जुगनू के साथ हाजिर है मोहम्मद हमादुर रहमान, हेड ऑफ वॉलंटियर्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते अपने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस का इंट्रोडक्शन लेकर आते हैं या किसी ना किसी सोशल इशू के ऊपर बात करने के लिए आपके पास हाजिर होते हैं। आज भी हमारे पास एक सोशल इशू पे बात करने के लिए नौजवान मौजूद हैं, नौजवान लीडरशिप मौजूद है, और माशाल्लाह जिसे कहते हैं जवान खून मौजूद है, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें उनसे हम सुनना चाहते हैं आज के, वो क्या काम कर रहे हैं और किस तरह से वो नौजवानों को सही रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। और साथ ही हम बात करेंगे कि जो आजकल ड्रग अब्यूज़ का मसला बढ़ता जा रहा है, उसके बिहाइंड क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से ऐसा होता है कि लोग ड्रग अब्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। इसी में अगर हम फर्दर देखें तो आजकल ख्वातीन में भी ये ट्रेंड पिक करता जा रहा है कि ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्वमेंट की ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई है, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद

0: कोई बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि अब वेज डिफरेंट हो गए, मेथड्स डिफरेंट हो गए, मॉड्स डिफरेंट हो गए, जरा नई से नई चीज़ें दुनिया में आती रहती हैं। तो अब बात हुई कि शीशा तो हमने बंद करवा दिया, लेकिन अब वही शीशा हर एक के हाथ में आ गया, यहाँ तक कि स्कूल किड्स भी लेके फिर रहे हैं उसको और पेरेंट्स खुद लेके दे रहे हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि शायद पेरेंट्स को अंदाज़ा नहीं है कि उसकी सिवेरिटी क्या है।
1: बिल्कुल ऐसे।
0: तो मैं चाहूँगा कि हमारे सामीन को आप उस पर ज़रा गाइड करें कि ये जो वेप है या ई सिगरेट है, ये किस हद तक सेफ है या किस हद तक नुकसानदेह है।
1: हमारे भाई, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं 2 से 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करूँगा। और इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब शीशा कैफेस को बंद करवाया गया और उस पर क्रैकडाउन होगा, उसके कुछ अरसे बाद एक नया ट्रेंड आ गया ई सिगरेट का, जिसे इलेक्ट्रिक सिगरेट कहते थे। उसमें क्या था कि पहले जब वो नया ट्रेंड आया तो उसमें लोग सेल डालते थे, सेल के साथ वो चलता था, फिर उसके बाद उसमें चार्जिंग की ऑप्शन आ गई चार्ज करके। तो वो इवन के हम डिफरेंट जगह पे जाना तो लोगों ने वो पॉकेट में रखा होना, इवन के डिफरेंट तालीमी इदारों में जब हम गए, जो आपने बात की है स्कूल्स की, तो क्लास 5-6 के बच्चों में हमने देखा कि उन्होंने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखा हुआ है। और टीचर को नहीं पता था, अवेयर ही नहीं थी कि ये क्या है। वो समझते थे कि ये कोई पेन है, डिफरेंट टाइप है ना, आर्टिफिशियल टाइप, बड़ी डेकोरेट हुआ हुआ है और ये। लेकिन फिर जब हमने उस पर स्टडी की, कैंपेन की, वो भी इंजूरियस टू हेल्थ था, उस पर भी वो जो फ्लेवर्स उसमें इस्तेमाल हो रहे थे, निकोटीन, वो आपको पता है एडिक्टिव है, हेल्थ के लिए मुजरे है। तो उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज होता होता कुछ साल वो रहा। 2016 में मुझे याद है कि हमने लाहौर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, स्ट्रेंथिंग ड्रग डिमांड रिडक्शन सर्विसेज इन पाकिस्तान। और उस प्रोजेक्ट में हम जब काम कर रहे थे और तलीमी इदारों में भी हम जा रहे थे, कम्युनिटी में भी इवेंट्स कर रहे थे, डिफरेंट जगह पर रिलीजियस लीडर्स के साथ, हर सेगमेंट को टच कर रहे थे, मीडिया के साथ, तो हमने उसमें देखा कि तब आइस का बड़ा रुझान आ गया। सुनने में आता था आइस आ गई है जी, आइस आ गई है, 20,000 की डोज है, 40,000 की डोज है। लेकिन तब हम ये कहते थे कि इस पर अगर काबू ना पाया गया तो यूथ इसकी तरफ बढ़ती जाएगी और एडिक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स, ये अट्रैक्टिव एक आ गया नया। तब हमें कहा जाता था या सबको कहा जाता था कि ये जो नशा है ना, ये बेसिकली मेडिकल जो पढ़ रहे हैं ना, मेडिकल जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, MBBS कर रहे हैं या कोई इस तरह का, तो मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट जो मेल और फीमेल में इसका रुझान ज़्यादा है। आइस का इस्तेमाल करने से बंदा अपने आप को दुनिया का सबसे अलग थलग शख्स समझता है, मतलब आप कह रहे हैं सुपरमैन समझता है। वो ये होता है उससे कि उससे तकरीबन एक डोज के बाद आपको 36 आवर्स तक नींद नहीं आती।
0: अच्छा।
1: आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और आप अपने आप को बिल्कुल एक ऐसा समझ रहे होते हैं कि मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। इवन कि अगर आपको कोई एक बंदा कहे ना यार, एक ये चेयर है या एक बड़ा बेंच है वजनी, ये इधर से उठा के बेसमेंट से और 6वीं मंजिल पे छोड़ो, वो बंदा कहेगा ठीक है, फौरन छोड़ के आएगा। वो इस कदर उसने आपकी बॉडी को एक्टिव किया होता है।
0: राइट।
1: वो जो फर्स्ट डोज है और उसके बाद फिर वो जब फर्स्ट डोज का वो जो आप कह लें असर उतरता है और जब वो नेक्स्ट डोज की तरफ जाता है, उसको वो प्लेयर नहीं मिलता।
0: अच्छा।
1: वो प्लेयर नहीं मिलता, उसके बाद फिर वो उसकी डोज इंक्रीज करता है। वो करते करते करते करते हमने तो ये देखा है जो अपनी फील्ड में कि आइस का जो यूज़र है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल 2 साल जिंदा रहता है। वो इतनी डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। पहले 6 माह जब वो यूज़ करता है तो उसकी बॉडी पे डिफरेंट जिस्म के हिस्सों पे, चेहरे पे, बाजुओं पे, हाथों पे उसके ना जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो आपको बॉडी उसकी श्रिंक सी होने लग जाती है, कमज़ोर आपको लगता है। उसके बाद चेंजिंग डिफरेंट आती है, आपको पता लगता है हेल्थ में कि यार ये कोई ना कोई तो इसके साथ मसला है। और आफ्टर डैट आपको पता चलता है अचानक एक दिन कि यार वो फलां का बच्चा या बच्ची सोई थी रात को, सुबह उठी है मुँह से जाग निकल आई है, या होश ही नहीं आई, या वॉशरूम में गिर गई है। तो वो यही वजह होती है। तो आइस का एक ट्रेंड आ गया। उसके बाद फिर अब जो नए उसके बाद टुवर्ड्स आइस अभी भी बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद निकोटीन पैचेस आ गए। वो बदकिस्मती से जो निकोटीन पैचेस इंट्रोड्यूस करवाने वाली कंपनीज थी,
0: मुस्लिम भाई, पैचेस या पाउचेस, क्योंकि पैच तो लगता है बॉडी के ऊपर
1: सर,
0: पाउच आई थिंक
1: दोनों आए हैं।
0: दोनों अच्छा दोनों का नुकसान,
1: यस दोनों आए हैं, एक बॉडी वाले हैं, एक जो वो तो आप डिफरेंट निकोटीन एडिक्टिव प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्ट थी वो उसको बदकिस्मती से जो उस कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस करवाया उसने टारगेट क्या किया,

0: यूथ को, उसने तलीमी इदारों के जो यूथ हैं उनको टारगेट किया, यूनिवर्सिटीज़ के मेल और फीमेल को, उनको अपना एम्बेसडर बनाया। वही बच्चे तलीमी इदारे के बाहर आते जाते, गेस्ट का, स्टूडेंट का, फैकल्टी का, उन्हें दे रहे थे कि जी आप ये लें प्रोडक्ट जो है, जो पाउचेज हैं स्मोक फ्री पाउचेज हैं, आप सिगरेट छोड़ते हैं ये ले लें, जब आप सिगरेट पीने लगे आप ये ले लें, ये स्मोक फ्री है। लेकिन उसकी भी बाद में स्टडी आई यूएस के एक इदारे की तरफ से, उसकी भी स्टडी रिपोर्ट आई, वो भी डेंजरस है हेल्थ के लिए। हमने उस पर भी काम किया, हमने उसके लिए भी डिफरेंट जो हमारे इदारे हैं हमने उनको लिखा कि ये एक मार्केट में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है हमारे इदारे ने कि यूथ जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवा रही है, ये नया एक ट्रेंड है टूवर्ड्स एडिक्शन का, लिहाजा इसको चेक किया जाए। लेकिन उस पर हमने बहुत सी मुश्किल फेस की और वो मैं आपको इधर अभी नहीं बता सकता, आप समझते हैं। तो लेकिन हमने काम नहीं छोड़ा, उसमें कई अच्छे लोग भी थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और वो मुश्किलात टल गई। लेकिन हमने वो कह लें कि साबित कदमी से हम चलते रहे। उसके बाद फिर नया जो आजकल वेप आ गया है, वे जो आजकल आपने बात की, हर बच्ची और बच्चे के हाथ में वेप है, और उसी तरह ही वो जो निकोटीन की वो है प्रोडक्ट की डिब्बी है, वो भी बच्ची के बैग में होती है। पेरेंट्स को पता कोई नहीं है, अवेयर नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो अपने काम में बिजी हैं, वालदा अपनी जॉब में बिजी है, फादर अपनी जगह है, बच्चे और बच्चियां उसी में लगे हैं। और ख्वातीन में जो आजकल रुझान बन रहा है वो आइस का, उसके बाद ये वेपिंग का बहुत ज्यादा है। अब वेपिंग में क्या करते हैं कि उसमें आइस का पानी, जो आइस है उसको वो मेल्ट करते हैं हीट एक खास मकदार पे देकर, जब उसका लिक्विड बन जाता है वो उसमें जो वेप है उस पे उसके निकोटीन जो लिक्विड है उसमें मिक्स करते हैं। जब वो मिक्स करते हैं तो उन्हें प्लेयर मिलता है और आफ्टर डैट कुछ अरसे बाद वो फिर एडिक्शन में एडिक्ट बन जाते हैं, क्रॉनिक एडिक्ट बन जाते हैं। और जब वो क्रॉनिक एडिक्ट बनते हैं तो फिर वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है।
1: ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जी जो आपने अभी सामीन के सामने रखी है। और एक और पॉइंट जो इसमें बड़ा अलार्मिंग मुझे नज़र आया, उस पर हम फर्दर बात करेंगे, ख्वातीन में इन चीज़ों का रुझान जो बढ़ रहा है उस पर हम रोशनी डालेंगे। लेकिन इस वक्त वक्त हुआ एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک. ہم بات کر رہے ہیں جناب سید محسن ذوالفقار سے جو کہ وائس چیئرمین ہیں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کے. محسن بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی کہ آج کل نئے سے نئے ٹرینڈز سامنے آ رہے ہیں, جیسے ویپس آ گئے, ای سگریٹس آ گئیں, پھر نیکوٹین پاؤچز آ گئے, اور اس طرح کی نئی سے نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس ان چیزوں کو روک نہیں پا رہے, ایک تو لیک آف انٹرسٹ کہہ لیں یا لیک آف ٹائم کہہ لیں, اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پیرنٹس کو ان چیزوں کا اتنا نالج بھی نہیں ہے. لائک میں اگر اپنے گھر کی بات کروں تو میری وائف نے ایک دن ایک بچے کے پاس, میرے بچے نہیں مطلب جاننے والے تھے, ان کے بچے کے پاس ایک چیز دیکھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہے. تو وہ سمجھ نہیں تھی کہ شاید کوئی پین یا اسی طرح کی کوئی چیز ہے ٹرینڈی سی, تو پتہ لگا جی یہ تو ویپ ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوتا ہے, تو پتہ لگا جی یہ چیز ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے بہت سے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویپس اور سگریٹس کیا چیزیں ہیں, اور ہم کھلونے سمجھ کے شاید بچوں کو لے کے دیے جا رہے ہیں. اور اسی میں فردر ہم بات یہ بھی کرنا چاہیں گے کہ خواتین میں یہ ٹرینڈ کیوں پک اپ کر رہے ہیں ان چیزوں کا.
2: عماد بھائی, جو نیو ٹرینڈ آف ایڈکشن ہے نا, جس طرح آپ نے ویپ کی بات کی, ویلو کی بات کی ہے, واقعی کچھ لوگ ابھی اس سے اویئر نہیں ہیں, خاص کر جو ہمارے مڈل کلاس فیملیز ہیں. یا لاہور کو ہم بیسکلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, جو کنال کے ایک دوسری سائڈ پہ لوگ ہیں, یعنی کہ جو والڈ سٹی ایریاز کی آپ بات کہہ لیں, ان میں جو ایڈکشن کا رجحان ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس میں ٹائپ آف ایڈکشن بھی ڈفرینٹ ہے. جو ادھر کے لوگ ہیں, جو ڈی ایچ اے یا اس سائڈ کے جوہر ٹاؤن, مال ٹاؤن, اس سائڈ کے ایریاز کے, پوش ایریاز کے, ان میں بھی رجحان ڈفرینٹ ہے. اب جو خواتین کا آپ نے ذکر کیا ہے, خواتین خاص کر کیونکہ ہمارا زیادہ جو لیزون رہتا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں رہتا ہے, کمیونٹی میں بھی رہتا ہے, جو آج کل کیسز نظر آ رہے ہیں, ایک تو اسٹریس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے خواتین میں. پھر گھریلو وجوہات جو ہیں, لائک جو کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ اگر جو فیمیل ہے ان میرڈ بھی ہے, اس کو گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں مل رہا سیٹسفیکشن, مین کہ آپ فیملی کی طرف سے سو مسائل ہوتے ہیں, آپ کا آنا جانا, فیملی کا بیک گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں, تو اس وجہ سے بھی کچھ اپنے اکیلا پن محسوس کرنے سے وہ بھی آ رہی ہیں ایڈکشن میں. پھر یہ ہے جو زیادہ تعلیمی اداروں میں جو رجحان بڑھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیئر پریشر, دوستوں کی بری صحبت. اگر میل ہے آپ کا کلاس فیلو, وہ اگر یوز کر رہا ہے ایڈکشن, تو وہ کسی نہ کسی طرح جو اس کی کلاس فیلو ہے وہ بھی اس میں اٹریکٹ ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کہ اگر کلاس میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, 20 بچے ہیں, 20 میں سے 4 لوگ نشہ کر رہے ہیں لڑکے, اور اس کے بعد کلاس کو تو پتہ ہے کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا اوکیزن آ جاتا ہے, کوئی فرینڈس کی گیٹ ٹوگیدر آ جاتی ہے, کوئی فرینڈس کی برتھ ڈے پارٹی آ جاتی ہے, جب وہ ادھر جاتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں, یا سیٹرڈے ویکینڈ کوئی پارٹی رکھی ہے انہوں نے, تو جب وہ ادھر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ جو دوست آلریڈی نشہ کر رہا ہوتا ہے, وہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے کہ سگریٹ یا کوئی ایسا فلیورڈ سگریٹ جو ہوتا ہے وہ اسے آفر کرتا ہے فیمیل کو کہ یہ آپ یوز کریں, کوئی بات نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا, یہ جسٹ فلیور ہے. اچھا وہ بار بار انسسٹ کرتا ہے تو وہ پھر جو فیمیل ہے وہ یوز کر لیتی ہے, وہ جب یوز کرتی ہے تو وہ ایک دفعہ یوز کرتی ہے اس کو پلیئر ملتا ہے, وہ پھر دوسری دفعہ دوبارہ یوز کرتی ہے, تیسری دفعہ دوبارہ کرتی ہے, آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ اس ٹرینڈ میں انگیج ہو جاتی ہے. بائی دا ادر سائڈ جو خواتین گھروں میں ہیں ان کا ٹوٹلی ڈفرینٹ سنیریو ہے, اس میں ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ شامل ہے, کہ ان کا بھی آلریڈی جو میل ہے گھر والا ہے جو, وہ نشہ کر رہا ہے یا اس کے پاس کام نہیں ہے, کام کی بجائے وہ مارتا ہے, کام پہ نہیں جاتا, گھر رہتا ہے, بیوی کو مارتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, یا بیوی کو کہتا ہے جاؤ تم کما کے لاؤ. تو اس وجہ سے بھی یہ 3-4 جو فیکٹر ہیں اس میں خواتین کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب الارمنگ یہ ہو گیا ہے کہ انہی جو ڈرگ اڈکٹس ہیں, جو لاہور کی, میں ہوملیس لوگوں کی بات کر رہا ہوں, نوٹ جو گھروں کے اندر ہیں یوز کر رہے ہیں, وہ ہوملیس جو لاہور کی سڑکوں پہ اس وقت 7,000 سے 8,000 بندہ ہے, اس میں لاہور کو ہم نے تقریباً جب اسٹڈی کیا تو 120 مقامات ایسے ملے, 120 پوائنٹس جہاں پہ میل لوگ بیٹھے تھے نشہ کر رہے تھے, مرد حضرات, ان میں ینگ بچے بھی تھے, اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسٹوڈینٹس, جو جاتے جاتے ہی ایک منٹ بائک روکی, ادھر سے اپنی ڈوز لی اور آگے نکل گئے. अब अलार्मिंग ये है कि उसमें से 30 से 35 ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहां पे एक तो तादाद बहुत ज्यादा है, और उस 35 में से 15 ऐसे एरियाज हैं जहां पे खवातीन अपने मेल्स के साथ आ गई हैं। अच्छा, अब वो उधर वो जो एरियाज हैं उधर जस्ट एक काम नहीं हो रहा कि आप उधर जस्ट एडिक्शन का यूज कर रहे हैं, अच्छा वो अपने बच्चे भी साथ ले, पूरी फैमिली आ गई है। अब जो उनके बच्चे हैं वो चाइल्ड बैगरी में चले गए, कि जब आपने देखा होगा सिग्नल पे जब हम गाड़ी रोकते हैं तो विंडो नॉक करते हैं बड़ी जोर जोर से बच्चे मारते हैं आके, वो वही बच्चे होते हैं जो चाइल्ड बैकरी में चले गए। उसके बाद जो अगला बंदा है जो खातून है वो भी उधर ही डिफरेंट एक्टिविटीज में इस्तेमाल होती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में, वो उधर से भी अर्न कर रही है, साथ नशा भी कर रही है, और जो मेल है वो उधर ही उसी चौक में कोई चोरी कर ली या कोई चीज उठा के बेच के अपनी जो उसकी डोज है वो पूरी होगी। तो इस जो ये सब्जेक्ट है ड्रग्स का या ड्रग एडिक्शन का, ये जस्ट ओनली एक एक चीज के इर्द गिर्द नहीं है, ये आप देखें कि मुआशरे के हर जो फर्द है कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करता है। आप देखें इस एक जो बंदा इस चीज में इन्वॉल्व होता है वो कितने डिफरेंट जो क्राइम्स हैं उसमें भी इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक चोरी में हो गया, सेक्सुअल एक्टिविटीज में हो गया, चाइल्ड बैगरी में हो गया, और डिफरेंट चीजें हैं। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मेरा ख्याल है एक सब्जेक्ट है, और इस पे मैं तो अक्सर जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाऊं मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, जहां कहीं भी हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, लाजमन इस इशू पे बात करें। कि मैंने तो अपनी जो हमारा इदारा 84 से काम कर रहा है और अराउंड 40 ईयर्स हो गए हैं इदारे को, मुझे कोई काम करते कोई 9 से 10 साल होने लगे हैं। मैंने तो अपने 10 साल में ये देखा है कि डिफरेंट लोगों को जो भी ट्रीटमेंट के लिए गए हैं आज तक कुछ अरसे के लिए रिकवर होता है, आखिरकार वो होमलेस ड्रग एडिक्ट बन के, चाहे वो खातून है या मेल है, वो अल्लाह के पास ही जाता है। तो आप ये देख लें,
1: ये तो जी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन आपकी बात से वाजे है कि ये जो ड्रग एडिक्शन का मामला है इसकी इंटेंगलमेंट हमारे माशरे के बहुत से एस्पेक्ट्स के साथ होती है, जिसकी वजह से इसको खत्म करना शायद मुश्किल हो जाता है।
2: बिल्कुल,
1: और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा भयानक होते हैं, क्योंकि ये किसी एक चीज पे असर नहीं कर रहा होता, ये मल्टीपल चीजों पे इफेक्ट कर रहा होता है। तो वेरी राइट जी, अब मैं ये समझता हूँ कि वैसे खवातीन के हवाले से जो मेरे एक अंडरस्टैंडिंग है, आपकी पॉइंट बहुत वैलिड है कि डेफिनेटली घरेलू इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और तनहाई या अनड्यू प्रेशर जो पेरेंट्स की तरफ से या घर वालों की तरफ से, वो भी इसकी एक वजह बनता है। एक जो ट्रेंड मैं आजकल देख रहा हूँ ना जी, अगर आप देखें मीडिया भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि जो आजकल ड्रामे आ रहे हैं उसमें एक तो ग्लैमराइजेशन बहुत ज्यादा है,
2: बहुत ज्यादा,
1: और उस ग्लैमराइजेशन का एक पार्ट ये भी बन गया हुआ है कि हीरो या कोई विलन बड़े स्टाइलिश अंदाज में सिगरेट या ई सिगरेट या वेप पीता हुआ नजर आता है।
2: बिल्कुल,
1: और आजकल कुछ खवातीन को भी दिखाया जा रहा है कि वो भी स्मोकिंग कर रही है या वेप यूज कर रही है। तो ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे मॉइस्चर पे
2: इवन के हमारे कुछ मेडिकल डॉक्टर्स भी, जो मैं एक पॉइंट भूल गया, मेडिकल डॉक्टर्स भी खवातीन को कहते हैं कि अक्सर आपने अगर वेट लूज करना है तो आप स्मोकिंग का इस्तेमाल करें, तो ये भी एक फैक्टर है उसमें। लेकिन जो आपने बात की है कि ड्रामा में डिफरेंट जगह सोशल मीडिया पे, वाकई ये आजकल ट्रेंड इंक्रीज हो गया। उसके साथ साथ ये जो आजकल नया ट्रेंड आ गया है एक शादी दूसरी शादी साथ या नशे का एलिमेंट, तो ये देखें मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये जो एडिक्शन का एलिमेंट है ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये मल्टीपल चीज़ों के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसमें भी ड्रामा में भी देखें वो आपका एक तो दूसरी शादी का एलिमेंट आ गया, फिर आपका कोई ओकेजन आ गई उसमें आ गया, फिर आपका पैसे के साथ रिलेट कर रहा है, पैसा नहीं मिला तो आप एडिक्शन की तरफ आ गए,
1: या पैसा मिल गया तो भी एडिक्शन
2: की तरफ आ गए, आप एडिक्शन की तरफ आ गए। तो वो आप देखें ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें पैसा मिल गया तो हम उस चक्कर में आ गए, कुछ कहते हैं यार हमें पैसा नहीं मिला तो हम इस टेंशन में आ गए। तो अब ये मैं समझता हूँ कि ये हर बंदे का एक अपना विल है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, हमारी फैमिली में भी आज तक किसी ने एक बंदे ने स्मोकिंग नहीं की। पुराने ज़माने की अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूँ तो उस दौर में, अगर आप भी उस चीज़ में जाएं अपने बचपन में, तो तब हुक्का होता था जो जी, तो हुक्का पुराना जो बुजुर्ग पीते थे, तो वो हुक्का आज भी कोई देहातों में चलता है, तो उसमें तो नहीं इस तरह एडिक्शन होती। वो लोग वो जो बुजुर्ग हैं वो भी साहब को मिलते हैं आते जाते, लेकिन ये जो एडिक्शन है ये तो आपके जेहन को मोफ कर देती है। आप आज शुरू करते हैं, महीने बाद आप पहचाने नहीं जाते, आप बातें ऐसी ऐसी करते हैं और उसके बाद आप फिर सड़क पे होमलेस ड्रग एडिक्ट होकर पड़े होते हैं, कोई आपको लेने के लिए तैयार नहीं है। और सड़कों पे जो एडिक्ट बैठे हैं, चाहे वो खातून है चाहे वो मेल है, दोनों मेल और फीमेल, इनमें ए टू जी जितनी डिजीजेज हैं इनमें सारी हैं, इनको कोई हॉस्पिटल कोई रिहैब सेंटर लेने को तैयार नहीं है, इवन के गवर्नमेंट भी ऑन करने को तैयार नहीं। तो आज आप अगर किसी जगह किसी पॉइंट पे गए, आपको एडिक्ट नजर आया और आप 10 दिन बाद गए या 5 दिन बाद गए, वो एडिक्ट नहीं पड़ा, आप पूछेंगे वो कहाँ गया, तो वो बताएंगे आपको जो उसके साथ साथी के, ये तो एक्सपायर हो गया था परसों ही आपके जाने के बाद हो गया था। लाहौर में जो अननाउन डेथ रेशो है ना होमलेस ड्रग एडिक्ट्स की, वो अराउंड 40-50 है एवरी मंथ। जो ईदी फाउंडेशन हमारी टीम साथ मिलके और साथ पुलिस का जो आईओ होता है वो मिलके उस बॉडी को रिकवर करते हैं, फिर उसका जो लीगल प्रोसेस है नादरा वेरिफिकेशन या मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना वो सारा कंप्लीट करके, और फिर उसको जो डेड हाउस है उसमें रखा जाता है कि शायद कोई इसका आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आता, वो बेयारों मददगार होमलेस उसी तरह ही पड़े होते हैं और फिर उनको दफना दिया जाता है। तो ये आप देख लें कि रास्ता हमने चुनना है, आया हमने एक कारामत शहरी बनना है या एक हमने होमलेस ड्रग एडिक्ट बन के लाहौर के किसी चौक में पड़े रहना है।
1: बिल्कुल सही बात है जी। देखिए हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अगर हम देखें हम पढ़ते थे MBA में मोटिवेशन के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसमें मेन चीज़ दो होती हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन ये है कि आपने एक बच्चे को एक दिन सबक याद ना करने पे पनिशमेंट दी तो वो नेक्स्ट डे वो याद करके आ गया।
2: Yes.
1: उसको लगा कि यार मैं अगर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। और एक होती है नेगेटिव मोटिवेशन, एक बच्चा एक दिन याद करके नहीं आया, सजा मिली, अगले दिन फिर याद करके नहीं आया, देखते हैं आज क्या होता है,
2: आज क्या होता है।
1: दूसरे दिन भी सजा मिली, उसको ये लगा कि यार मेरे साथ तो होना ही यही है, तो बेहतर मैं ना ही याद करूं, दैट्स नेगेटिव मोटिवेशन। तो ये हम देखते हैं हमारे माशरे में ये चीज बढ़ती जा रही है कि लोग अपने हालात से तंग आके नशे की तरफ जा रहे हैं बजाय इसके कि हालात को बेहतर करने की कोशिश करें। तो ये आपके पास बिल्कुल ठीक है कि विल पावर के ऊपर है, आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है, अपनी जिंदगी को कहां लेके जाना चाहते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं शेयर करता चलूं, मेरे फादर और मेरे बड़े भाई दोनों जो है वो चेन स्मोकर्स हैं, ठीक है, एंड आई हैव नेवर स्मोक्ड अ सिगरेट इन लाइफ। तो ये अपनी चॉइस की बात है, तो मैंने मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती, सो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया उस चीज़ को, और मैं डेफिनेटली यही चाहूंगा कि मेरे इर्द गिर्द के लोग भी इस चीज़ों की तरफ ना आएं। तो ये आपका इन्फ्लुएंस भी बड़ा मैटर करता है कि आपने इर्द गिर्द लोगों में पॉजिटिव चीज लेकर आते हैं या नेगेटिव चीज़ें।
2: बिल्कुल आपकी विल पावर है ना। अगर आप अब मैं अगर अपना कॉलेज लाइफ देखूँ तो मेरे दोस्त थे जब शीशा कैफेज का ट्रेंड बढ़ रहा था तो वो मुझे कहते थे देखें यार ये शीशा कैफे खुल गए हैं, वो पीते थे लेकिन उन्हीं के साथ बैठ के हम डिफरेंट, मुझे पता था मेरे फादर काम करते हैं, मैं डिफरेंट उनके थ्रू बताता था लोगों को, तो वो बंद हो जाते थे। बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे ले जाना ही छोड़ दिया, कि वो मुझे कहते भाई तुम जिधर जाते हो ना ये कैफे बंद हो जाते हैं, तो आप ना ही जाया करो। मैंने उनसे पूछ रहा जी आज किधर जा रहे हैं, कहते यार कहीं नहीं जा रहे, इधर ही बैठने लगे हैं। तो बात यह है कि आपने जो आपकी सोहबत है उससे भी आप लर्न करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता चला कि ये चीज़ गलत है तो उन्होंने भी स्किप कर दिया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारी दोस्ती भी है, डिफरेंट जगह वो लगे भी हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो तब एक वे फॉरवर्ड हमने चुना कि यार आया इस तरफ जाना है या दूसरी तरफ पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। आजकल लोग क्या करते हैं, जिस तरह ये शादी ब्याह है, दो तीन ऐसी बरादरियां हैं जिनकी शादी पे अगर ये ड्रग का यूज ना हो तो वो समझते हैं हमारी शादी नामुकम्मल है, कंप्लीट ही नहीं हुई। तो आपको इन चीजों से भी बाहर निकलना होगा अगर आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है। तो मेरा ख्याल है इस पे हमें जंगी बुनियादों पे काम करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एडिक्शन का रिलैप्स रेट 98% है। Yes. अगर एक बंदा एडिक्शन में चला जाता है और उसका इलाज होता है और वापस वो बाहर आता है मुआशरे में, उसके बाद फिर वो एक दो माह बाद एडिक्शन की तरफ चला जाता है। इलाज की तो सहूलियत ना होने के बराबर है, और प्राइवेट सेक्टर जो है ट्रीटमेंट रिहैब सेंटर, वो दे आर टू मच एक्सपेंसिव। अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो एक दिन का 2 लाख रुपए तक पर डे भी चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कोई 20 लाख मंथ भी चार्ज कर रहा है, कोई 10 लाख भी चार्ज कर रहा है, कोई 5 लाख भी कर रहा है, कोई 1 लाख भी कर रहा है। तो फैसला हमने खुद करना है कि हमने किस तरफ जाना है।
1: ये आपने एक तरह से बिजनेस का आइडिया भी दे दिया लोगों को कि ये कैसे फील्ड है
2: नहीं
1: जहाँ पे भी कंपटीशन कम है तो ये शुड थिंक अबाउट बिल्डिंग अ रिहैब सेंटर
2: अल्लाह करे
1: इस पे काम करें
2: लोग इस तरफ भी रिहैब सेंटर बनाए बहुत कम ही
1: हैं वैसे ये जरूरत तो है डेफिनेटली इस चीज की और इस चीज की बड़ी जरूरत है कि हम दूसरों को पॉजिटिव मोटिवेशन दें और दूसरों पे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रखें। मोहसिन भाई बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके लेकिन वक्त की कमी की वजह से इजाजत चाहेंगे आज के शो से। बस जाते जाते एक छोटा सा मैसेज आपसे चाहूंगा नौजवानों के लिए जो आप देना चाहेंगे।
2: मत भाई आहर में मैं यही कहूंगा आपका आपकी एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की पूरी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि हमेशा वो कुछ अरसे बाद महीने बाद हमें ज़रूर याद करते हैं इस अहम इशू पे बात करने के लिए। और जो मेरा पैगाम है नौजवानों को वो यही है ख़ासकर ख़वातीन को और मेल्स दोनों को कि जो आजकल एडिक्शन का बढ़ता हुआ रुझान है इसको आप अवॉइड करें और आप पॉजिटिविटी की तरफ आएं पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ें आपका फ्यूचर ब्राइट है पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे कि जनाब आगे तो कुछ नहीं है और आप एडिक्शन की तरफ आ जाएं ये सिगरेट पिएं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग की तरफ आ जाएं तो उस दोस्त को आप छोड़ दें। वक्ती तौर पर आपको ज़रूर परेशानी होगी कि यार मेरा 2 साल पुराना दोस्त था 3 साल पुराना दोस्त है लेकिन उस जो 3 साल छोड़े और जो 3 साल आपने टाइम गुजारा होगा तो आपको अपना डिसीजन वाकई याद रहेगा कि मैंने अच्छा फैसला किया। और अपनी जो फैमिलीज हैं आपकी जो पेरेंट्स की मदर की फादर की आपके साथ एक्सपेक्टेशंस हैं जो आप पे वो इतना इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची एक डिग्री लेके आए यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टर बन के आए वो इंजीनियर बन के आए वो डिफरेंट जो भी फील्ड में है तो आहरकार वो क्या बन के आता है जो 4 साल लगाए होते हैं वो किसी ना किसी तरह नशे की लत में मुब्तला हो जाते हैं तो वो उस इन्वेस्टमेंट का भी नहीं फ़ायदा उस यूनिवर्सिटी का जो टाइम है या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का जो उस पर टाइम है वो भी ज़ाया फिर उसके बाद फैमिली में वो ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहता है लोग उसे तरह तरह की बातें करते हैं तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ें तो आप हर मंजिल तक पहुंच सकते हैं कामयाबी कामयाबी।
1: नो डाउट जी जिंदगी खूबसूरत है और उसको खूबसूरती से ही जीने की कोशिश करें और खूबसूरती में इजाफा करने की कोशिश करें। इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं आज के शो से हाजिर होंगे आपके पास अगले हफ्ते मंगल के रोज शाम 6 बजे आपके पास हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम के साथ। इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Radio.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज़ हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, मेरा नाम है आमना बतूल और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCB की दुनिया। मेरा ताल्लुक है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। आज है मेरे साथ एक खास मेहमान इसी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से और आज हम आपके साथ एक बहुत मजे की डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट मी वेलकम मिस अनम अमीन शामी, ये हैं लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। वेलकम टू द शो मैम।
2: थैंक यू मिस आमना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
1: आज हम एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा 12th ग्रेड के स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होता है और वो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या और भाई ये जरूरी क्यों है।
2: सो बेसिकली आपको पता है कि हमारे पास में सामना आजकल हर दुनिया में डिफरेंट इनोवेशंस हो रही हैं, मेडिसिन जो है नई बन रही है दिन ब दिन, हमारे पास डिजीज रेजिलिएंट क्रॉप्स जो है वो बन रही हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी है क्या, हमारे पास नॉलेज है या इम्प्लीमेंटेशन है बायोलॉजिकल नॉलेज की और किस तरह से हम उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने।
1: ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज दिस, व्हाई शुड स्टूडेंट्स चूज बायोटेक्नोलॉजी?
2: सो दो दे आर मेनी आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी दे आर वेरी वास्ट ऑप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास क्यों बच्चों को बायोलॉजिकल साइंसेज से निकल कर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए उसकी बहुत सारी रीजन है। हम अपने कुछ ग्लोबल चैलेंजेस की तरफ देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है रोज बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसी तरह से हम पहले पिछले सालों में जो है टाइम नहीं होता था कि हमारे पास डिफरेंट डिजीजे आए, आज हर रोज कोई ना कोई नया आउटब्रेक आया था, आफ्टर कोविड दे आर मेनी आउटब्रेक्स जो कि हमारे पास उभर हुए हैं और ये सारी की सारी वजह क्या है, इनको इनके साथ डील करने के लिए जो चीज हमें चाहिए साइंस चाहिए दैट इज बायोटेक्नोलॉजी।
1: अच्छा, सो अब हमारी एक कंफ्यूजन क्लियर हो गई, वो ये कि बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है और भी बहुत ज्यादा आजकल की जो बर्निंग फील्ड्स हैं उसके साथ रिलेटेड है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स जो इस फील्ड को पिक करें बायोटेक्नोलॉजी को, वो खुद को लिमिट नहीं कर रहे होते एक ही करियर के साथ?
2: नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है मैं सामना, बल्कि ये हमारे पास सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एनवायरनमेंट में भी इम्प्लाई करती है, इंडस्ट्रियल जो है हमारे पास डिफरेंट जो ऑपरेशन है उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो हेल्प आउट करती है। इवन के हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो है बच्चे अपना जो है वो बिजनेस या अपना वेंचर भी बना सकते हैं।
1: अच्छा, और अब मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूंगी जो कि आई थिंक मैं स्टार्ट से ही पूछना चाह रही थी और जो कि बच्चे भी यही पूछना चाहते हैं, वो ये कि करियर कौन सा हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद और स्कोप क्या है इसका?
2: सो अगर हम करियर की बात करें तो हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा कि बायोटेक जो है हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो अगर करियर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट करियर्स आते हैं, जैसे कि बच्चे हमारे पास जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं जो पास होते हैं तो वो किसी न किसी इंडस्ट्री में एज अ क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के तौर पे जो है वो काम कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर किसी भी बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल एबी मौर्य हमारे पास एक बायोटेक की कंपनी है जहाँ पे बच्चे एज अ क्वालिटी एनालिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो जेनेटिक काउंसलर बन सकते हैं जिसके थ्रू वो पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से जीन्स जो हैं जिनकी वजह से डिफरेंट इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो बच्चे हैं वो कुछ एकेडेमिया को भी चूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने और आपने किया है, ठीक है। सो उसमें ये है कि बच्चे जो है वो बैचलर्स के बाद जो है वो मास्टर्स करते हैं और मास्टर्स करने के बाद जो है वो PhD करते हैं और इस तरह से वो दे बिकम अ पार्ट ऑफ द एकेडमी।
1: ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट जॉब्स बट माय क्वेश्चन इज डज बायोटेक्नोलॉजी ओपन डोर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल?
2: यस ऑफ कोर्स, हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी जो फील्ड है वो एक इनोवेशन का नाम है, ठीक है। तो हमारे पास जब आप डिफरेंट टेस्ट डायग्नोस्टिक किट्स बच्चे जो बनाते हैं वो डिफरेंट प्रोसीजर से या प्रोटोकॉल से गुजार के SOP से गुजार के उनको एज अ सेल भी कर सकते हैं, एज अ बिजनेस वेंचर भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है हम डिफरेंट इनोवेटिव फूड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं लाइक कैफिर वाटर आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत मिलता है, इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आ जाते हैं जैसे बायोप्लास्टिक्स आ गया, ठीक है, विच इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो यहाँ पे इस तरह से हम जो है बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए और ज्यादा जो है वो रास्ते खोलती।
1: सही, सो नाउ वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि बायोटेक्नोलॉजी इज अ फील्ड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ लिटिल ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल हैव मोर डिस्कशंस।

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामाइन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कैसी फील्ड है ये और स्टूडेंट्स को चूज क्यों करनी चाहिए। और इस वक्त हम एक बहुत ही मजे की डिस्कशन कर रहे थे जो कि ये थी कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या क्या सीन है यूसीपी के अंदर। सो मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कुछ एग्जाम्पल्स एंटरप्रेन्योरशिप की कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स यूसीपी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं?
2: जी बिल्कुल आमना, पहले मैं इससे पहले ही बताना चाहूंगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेंटर है, दैट इज द क्लिक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर, जो कि बच्चों को सपोर्ट करता है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सो हमारे पास रिसेंटली हमारे बच्चों ने जो है वो होलोग्राफिक माइक्रोस्कोप बनाया था, जिसको दे हैव प्रेजेंटेड इन पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, राइट? ठीक है, इसी तरह से हमारे पास कुछ बच्चों ने जो है वो फूड बायोटेक्नोलॉजी को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हुए प्रोडक्ट्स बनाई थी, जैसे जिसमें हमारे पास बेक थ्योरी आता है, उसमें बच्चों ने जो है हमारे पास विदाउट शुगर जो है वो हमारे पास ब्राउनीज बनाई थी। सो वी ऑल लव ब्राउनीज, सो इस तरह से हमारे पास जो वो एक हेल्दी ब्राउनी के तौर पर उसने सब्स्टिट्यूट जो है वो बनाया था वेंचुअल उसका। इसी तरह से स्टफ बंस हैं, जिसमें उन्होंने जो है कुछ थोड़ी सी टेक्निकल में टर्म्स यूज करूंगी, जिसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट करके जो है वो हमारे पास एक बहुत जो है वो टेस्टी बंस बनाया। लाइकवाइज हमारे पास एक और वेंचुअल है चुस्की, जिसमें जो है बच्चों ने फर्मेंटेड टी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया।
1: अच्छा, तो ये जो तखलीक इंक्यूबेशन सेंटर है, क्या ये स्टूडेंट्स को मेंटोर करता है, क्या इसके चार्जेस होते हैं, कुछ इसके बारे में बताइएगा प्लीज।
2: सो ये जो हमारे पास तखलीक इंक्यूबेशन सेंटर है, ये बेसिकली क्या करता है, बच्चों को बेसिकली ट्रेन करता है कि हाउ दे कैन मेक देयर ओन रन देयर ओन बिजनेस। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे तखलीक पॉप अप है, ठीक है, और इसी तरह से उनका गेम्स का एक होता है, जिसके अंदर बच्चे डिफरेंट आइडियाज पहले डेवलप करते हैं एंड देन दोस तखलीक जो की जो मेंबर्स हैं वो उनको ट्रेन करते हैं कि किस तरह से वो अपना वेंचर जो है वो उसको एज अ वेंचर या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसके अंदर लेके जा सकते हैं।
1: ये तो आपने बहुत ही मजे की बात बताई है। सो द पॉप अप इज इन द यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को एक चांस मिल जाता है कि वो अपना प्रोडक्ट इधर ही स्टूडेंट्स के सामने एक दफा दिखाते हैं और उनको फीडबैक मिल जाता है।
2: जी ऐसा ही है बिल्कुल, और इससे उनको ये भी पता लग जाता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो इन दिस वे दे हैव इवन के तखलीक जो है हमारे पास डिफरेंट, फिर उन्हीं पॉप अप स्टूडेंट्स डिफरेंट इवेंट्स जो हमारे पास होते हैं वो तखलीक के डिफरेंट स्टॉल्स लगाते हैं बच्चे, ताकि वो मजीद उनको प्रमोट किया जाए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है इससे।
1: दिस इज सो अमेजिंग। अच्छा, सो इज यूसीपी ओनली ऑफरिंग बीएस बायोटेक्नोलॉजी?
2: नो मैम, हमारे पास जो यूसीपी है स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो हमारे पास बीएस बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, इसके साथ साथ एमएस बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है और एमएस फोरेंसिक साइंस ऑफर कर रहा है एंड ऑल्सो पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा
1: है। अच्छा, दैट्स रियली नाइस। अच्छा, बिकॉज द कोर्सेज आर एडवांस्ड, आप बता रही हैं कि एमएस भी ऑफर कर रहे हैं, पीएचडी भी ऑफर कर रहे हैं, तो फैकल्टी के बारे में बताइएगा, कैसे क्वालिफाइड फैकल्टी है हमारे पास?
2: हमारे पास जो है इस वक्त जो है अराउंड 11 फैकल्टी मेंबर्स हैं, और जिसमें से तमाम फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर फॉरेन क्वालिफाइड, कुछ फैकल्टी मेंबर्स चाइना से हैं, कुछ जर्मनी से क्वालिफाइड हैं, इसी तरह से हमारे पास जो पाकिस्तान के रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से जो है वो डिफरेंट क्वालिफाइड जो है फैकल्टी मेंबर्स।
1: ओके, अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो कि एक्सपर्टीज से जरा हट के है। मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट्स जब बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को चूज करें तो किस तरह से डिपार्टमेंट उन्हें ओन करेगा, उन्हें कैसा महसूस होगा, उनका डे टू डे कम्फर्ट लेवल यहाँ पर कैसा होगा?
2: So, सबसे पहले तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। वी ऑर्गेनाइज अ मीट एंड ग्रीट इन विच जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी सारी फैकल्टी मेंबर्स से जो है वो फेमिलियर होते हैं, जिनके साथ उन्होंने अपने अगले चार जो है वो साल गुजारने होते हैं। इसके अलावा जो है हम डिफरेंट ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, और साथ साथ जो है वो हर कोर्स करिकुलम का ये पार्ट होता है कि बच्चों को जो है इंगेज किया जाए, डिफरेंट चार्ट्स बनवाए जाते हैं, बच्चों से पोस्टर्स वगैरह बनवाते हैं रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट विच दे आर स्टडिंग एट दैट टाइम, राइट? इसी तरह से हमारे पास जैसे फूड बायोटेक है, उसमें जो है बच्चे फूड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी है तो उसके हमारे पास बच्चे जो है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू जो है प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चों की सेल्फ ग्रूमिंग होती है, उनकी कुछ सॉफ्ट स्किल्स जो है वो इस तरह से इन्हांस होती है।
1: सो बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को फैकल्टी के मेंटोरशिप बहुत हाई अमाउंट में मिलती है और वो 4 साल उनकी ग्रूमिंग पे खूब वक्त स्पेंड करते हैं और इस दौरान उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है जो कि बाद में खत्म भी नहीं होता, ऐसा ही है?
2: जी बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा नहीं है कि हमारी फैकल्टीज जो है वो सिर्फ बच्चे जो पास आउट हो जाते हैं तो उनके साथ उनका बॉन्ड खत्म हो जाता है, इवन कि आफ्टरवर्ड्स भी फैकल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनको सपोर्ट करने में, जब उनको सपोर्टिव लेटर्स वगैरह चाहिए होते हैं अपने फॉरेन स्टडीज के लिए तो वहाँ पे भी हमारी फैकल्टी हम लोग जो है अपने स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं।
1: अच्छा आपने अभी एक बात की सॉफ्ट स्किल्स की, व्हेन आई वाज इन ग्रेड 12 तो मुझे बहुत डर होता था बोलने का इन द पब्लिक एंड ऑल्सो माई लैंग्वेज स्किल्स वर नॉट गुड एट ऑल, सो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किस तरह, दिस इज अ क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, किस तरह से सॉफ्ट स्किल्स बेहतर होती हैं, उनकी स्पीकिंग स्किल्स कैसे बेहतर होती हैं?

0: है, कुछ मेडिसिन का साइट है, सो इट्स सो वास्ट। तो क्या यूसीपी के पास लैब्स हैं जहां पर इन सब चीजों से रिलेटेड रिसर्च की जा सके? लैब्स के बारे में काफी बताइएगा प्लीज।
1: जी, हमारे पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के पास करेंटली 3 लैब्स हैं, ठीक है। वन इज मेजरली डेजिग्नेटेड फॉर द बीएस एंड दो आर हमारे पास 2 रिसर्च लैब्स हैं, जिसमें फोरेंसिक की लैब है और हमारे पास एक जनरल रिसर्च लैब है। हमारे जो रिसर्च लैब्स हैं दे हैव ऑल द रिसर्च फैसिलिटीज अवेलेबल इन दैम, लाइक PCR हो गया हमारे पास, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, इसके अलावा शेकर्स हैं, और हमारे पास जो है RT-PCR है विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट वन, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है सेल एंड टिश्यू कल्चर की भी कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो हमारे लैब में मौजूद है।
0: सो बैचलर्स के लेवल पे बच्चों को रिसर्च करवाई जाती है?
1: अच्छा, यहाँ बैचलर्स के लेवल पे ये बात है कि हमारे पास बच्चों को हम रिसर्च करवाते हैं, ठीक है। उसमें जो है हम स्टूडेंट्स को प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमारा मेजर फोकस होता है कि हम बच्चों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं।
0: सामिन, हम कर रहे हैं बहुत मजे की डिस्कशन, लेकिन वक्त हो गया इस वक्त छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेगा, हमारे साथ ही रहेगा।

0: ये जा सके. सो दैट्स रियली नाइस. अच्छा, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि यूसीपी आपकी या बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आपकी सीवी को कैसे बेहतर करता है?
1: सो हमारे पास जो यूसीपी है वो हमारे पास सीवी बिल्डिंग में बहुत हेल्प आउट करता है. हमारे पास यूसीपी में डिफरेंट सोसाइटीज हैं, हमारे पास SSI है जो कि मेजरली डिजिग्नेटेड है या डेडिकेटेड है टुवर्ड्स साइंस एंड इनोवेशन. सो इट इज सोसाइटी ऑफ साइंस एंड इनोवेशन. इसके अलावा हमारे पास डिबेटिंग सोसाइटी है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सोसाइटी है, हमारे पास ड्रामेटिक सोसाइटी है जो को कलर एक्टिविटीज के अंदर जो है हम बच्चों को इंगेज करते हैं. सो इन सोसाइटीज से जाने का फायदा ये होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है. इसके अलावा उनकी जो है वो सोशल स्किल्स भी जो है वो एनहांस होती है.
0: अच्छा, एक सवाल है जो कि जेंजी के माइंड में बहुत ज्यादा चलता है और वो ये एनवायरमेंट कैसा है. कितनी भी अच्छी लैब्स हो, कितना भी अच्छा स्कोप हो सब्जेक्ट का, अगर वो 4 साल एनवायरमेंट हेल्दी में ना रहे तो आई डोंट थिंक जेंजी कैन सर्वाइव. तो प्लीज मुझे बताइएगा कि इस डिपार्टमेंट में किस तरह का एनवायरमेंट बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
1: हमारे डिपार्टमेंट में जो है एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनवायरमेंट है बिटवीन नॉट ओनली बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो बिटवीन द स्टूडेंट्स. हमारे पास जो सीनियर जो है हमारे पास फेलोज और वो अपने जूनियर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं. इवन कि जब हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें सीनियर जूनियर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें वो जो है वो एक जो थोड़ी सी आइस ब्रेकिंग आप कह लें, दोस इवेंट एक्ट एज आइस ब्रेकर्स फॉर देम, जिसके थ्रू वो आपस में बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो है बहुत स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल हैरासमेंट पॉलिसी भी है, जो कि हमारे पास किसी किस्म की हमारा डिपार्टमेंट जो है वो किसी किस्म की बुलिंग को जो है वो सपोर्ट नहीं करता. तो इस तरह से जो है एक थोड़ा चेक एंड बैलेंस भी है हमारी तरफ से कि वी हैव सच पॉलिसीज एंड हमारे पास डिसिप्लिनरी कमेटी है. उसके साथ साथ जो है वो बच्चे जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं थ्रू इवेंट्स के तौर पे तो तब भी उनकी जो है आपस में कम्युनिकेशन काफी अच्छी. तो ओवरऑल मेरे ख्याल से बड़ा एक हेल्दी एनवायरनमेंट है.
0: अच्छा, अब आपसे मैं अपनी पर्सनल राय लेना चाहती हूँ. आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं और आप पर्सनली क्या रिकमेंड करेंगी आने वाली लॉट को?
1: सो मैं जो है अराउंड मुझे 4 इयर्स हो गए हैं यहाँ पे यूसीपी में पढ़ाते. तो मेरा तो पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा फील ही नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर में इतनी बिल्डिंग, करेक्टर बिल्डिंग, इतनी जो है वो प्रोफेशनल बिल्डिंग की जा सकती है जितना इस वक्त जो है यूसीपी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट करता है और उनकी प्रोफेशनल बिल्डिंग में हेल्प आउट करता है. तो हम लोग जो है खुद तो गवर्नमेंट के पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने इतना अच्छा एनवायरमेंट नहीं जो है वो कहीं नहीं देखा जितना मुझे यूसीपी स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में मिलता है. और अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से मुझे क्या फायदा हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड एक तो पढ़ने का तो आपको होता ही फायदा, लेकिन पढ़ाने में ये आपको मजा आता है कि आप जो है जब नई जनरेशन से मिलते हैं उनके न्यू आइडियाज आपके पास आते हैं. सो बायोटेक्नोलॉजी इट्सेल्फ इट्स इनोवेशन. सो विद दैट हम अपने नॉलेज को जो है वो दिन ब दिन जो है वो डिफरेंट चीजों में इनोवेशन में इम्प्लाई कर रहे होते हैं.
0: सो दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ ब्यूटिफुल 4 इयर्स जिसमें एक्सपर्टीज भी है, लैब वर्क भी है, इनोवेशन भी है, टीचर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन भी है और आपस में भी एक हेल्दी एनवायरमेंट है बच्चों को मिल रहा जहाँ पे फ्रेंडली महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल एक डिस्कम्फर्ट नहीं है. सो मैं अगर स्टूडेंट होती तो मैं आपसे जरूर ये सवाल पूछती कि किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है यूसीपी में.
1: अच्छा, मैं सामना इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको यूसीपी की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना होगा और उसमें एडमिशन सेक्शन में जाके जो है हमें एक ऑनलाइन फॉर्म जो है वो सबसे पहले उसमें लॉगिंग बनाएंगे अकाउंट, आप अपने ईमेल से और अपना पासवर्ड वगैरह डालेंगे. देन वी हैव टू फिल साइन अप करेंगे एक ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है. जब वो फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाता है उसके बाद जो है बच्चों को एक छोटा सा प्रिलिमिनरी एडमिशन टेस्ट होता है जिसमें हम उनका नॉलेज जो है वो असेस करते हैं, ठीक है. आफ्टर दैट हमारे पास जब वो एडमिशन टेस्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास उनको उस मेरिट की बेसिस पे जो है वो बच्चों को एडमिशन दिया जाता है.
0: अच्छा, सो दिस इज सच एन इजी प्रोसेस जिसमें मैं वेबसाइट पर जाऊंगी, अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगी, इन्फॉर्मेशन डालूंगी एंड देन देयर इज अ टेस्ट.
1: यस.
0: और टेस्ट के बाद क्या कोई इंटरव्यू होता है?
1: नहीं, हमारे पास टेस्ट के ही थ्रू जो है वो हम बच्चों को असेस कर लेते हैं. और टेस्ट का पर्पस भी जो है वो बच्चों को डिग्रेड करना नहीं है बल्कि उनको एक थॉट प्रोसेसेस को जो है उनकी एनहांस करना है कि क्या कितना नॉलेज उनके पास बायो से रिलेटेड है और जो माइनर्स हैं हमारे उनसे रिलेटेड है जिसके थ्रू जो है वो हमारे पास वो आगे अपनी फील्ड में जा सकते हैं.
0: सो जब मेरा एडमिशन यूसीपी में हो जाए तो क्या मुझे क्या पहले दिन भागना दौड़ना डर के मारे हर जगह फिरना पड़ेगा कि मेरी क्लासेस कहाँ है या फिर मेरे लिए कोई ओरिएंटेशन होगी?
1: अच्छा, हमारे पास ऐसा होता है कि जब हमने बच्चे स्टूडेंट्स जो है सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले जो है हम एक जीरो वीक रखते हैं, ठीक है। उस जीरो वीक का पर्पज क्या है कि वी इनवाइट द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स, जिसके अंदर उनको सब लैब से जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यूनिवर्सिटी की डिफरेंट पार्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। हमारे पास यूनिवर्सिटी में एक जिम भी है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर जो है वो एक जिम है रखा हुआ, उन्होंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपने फ्री टाइम में फिजिकल एक्टिविटीज को एनहांस करें। इसके साथ साथ जो है हमारे पास स्विमिंग पूल है जिसमें भी अगेन बच्चे डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज में जो है वो एंगेज हो सकते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट और हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑफिस है जो के बच्चों को स्कॉलरशिप में भी इटसेल्फ एड कर रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैरियर सर्विस ऑफिस है जो के बच्चों को हेल्प आउट करता है इन गेनिंग द इंटर्नशिप्स, क्योंकि आपको पता है हमारे कोर्स करिकुलम का पार्ट है कि एक सेमेस्टर में इन द सेवन सेमेस्टर दे हैव टू डू एन इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप। तो उसके लिए हमारे पास जो कैरियर सर्विस ऑफिस है अलॉन्ग विद द फैकल्टी का जो लेजन है, फैकल्टी का फाइलो है, वो उसमें हेल्प आउट करता है उनको इंटर्नशिप गेन करने में।
0: अच्छा, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर वेयर देयर इज स्पोर्ट्स, देयर इज रिसर्च, इनोवेशन एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट। दिस इज सो अमेजिंग, थैंक यू सो मच मिस अनम। आखिरी मेरा आपसे जाते हुए एक सवाल है, फ्यूचर क्या देखती है बायोटेक्नोलॉजी का आप?
1: सो बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर जब हम पढ़े थे तब भी ऐसा लगता था कि अभी बहुत कुछ है। सो बीइंग अ टीचर आई कैन स्टिल से देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ एक छोटी सी फील्ड का नाम नहीं, इट इज अ डोमेन है, इसकी बहुत डिफरेंट डायमेंशंस हैं, आप इसको दूसरी फील्ड्स के साथ भी इंटररिलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज अ फ्यूचर। थैंक यू।
0: सो इसी के साथ हम अपने इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच सामईन, आप हमारे साथ बने रहे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत. आपकी दुनिया हमारी दुनिया. UCP की दुनिया FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Magic 2.6.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
2: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
2: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
2: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
2: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: डू यू वॉन्ट टू लिसन टू

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 90

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 to life. Station of the nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।